0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Just

0: Aamir Khan wondered.
1: Wow. Look, I could have thought of anything. That's amazing.
0: Salman Khan wanted answers.
2: Kaise kiya ye?
0: R. Madhavan said.
3: Awesome.
4: You're very good, yaar. Very well done.
0: And Boman Irani?
5: I say this with great respect. This is actually, it's blown my mind.
0: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
6: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhani.
0: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wonder Soul Escapades and Epic Encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
7: How do you know these things? Stop reading my mind.
8: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
9: भाई की डन है मम्मा।
10: ड्यूटी?
11: लास्ट टाइम मैं उठा था ना।
10: मैं उठता।
8: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन, इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करें ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ, वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप, अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट jyoti.com.sg। इट्स द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। हैव अ मस्ती भरा वीकेंड।

वीकेंड का मजा विद द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10 का 20।
1: अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है।
3: टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
2: Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters. Josh
4: Shreya, zara utke radio masti speaker pe laga dena.
5: Bhai ki don hai mama.
6: Duty?
7: Last time, main uta tha na.
6: Main uta tha.
4: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोकझोंक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट jyoti.com.sg।
2: Best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है, मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
2: Perfect recipe for you to unwind. Musty weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: भाई की डन है मम्मा।
2: ड्यूटी
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
1: मैं उठता।
0: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करें ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट jyoti.com.sg।
4: आमिर खान wondered.
5: Wow, look, I could have thought of anything. That's amazing. Yeah.
4: सलमान खान wanted answers.
6: कैसे किया ये?
4: R. Madhavan said.
7: Awesome. You're very good, yaar. Very well done.
4: And Boman Irani?
8: I say this with great respect. This is actually it's blown my mind.
4: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
9: Anybody talks about magic in the country, I want them magic सुहानी.
4: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wow! One Soul Escapades and Epic Encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer, People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
10: How do you know these things? Stop reading my mind.
11: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: करना चाहिए? आप बोलो, हम बनाएंगे। चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन,
1: ऑल इज वेल।
0: आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
3: Perfect recipe for you to unwind. Musty Weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: शख्स जिसको हंसते हुए घर पसंद थे, वो शख्स जिसको बोलते मंजर पसंद थे, वो शख्स जिसके साथ समय खुशगवार लगता था, वो शख्स जाने कितने दिलों का करार था। कैसे बताऊं तुमको वो किस बात में गुम है, वो कहां है, जाने कहां हुआ गुम है। नमस्कार, एक बार फिर कोई ऐसी दास्तान लेकर मैं हाजिर हो गया हूं जो जाने कहां गुम हो गई है। जो दास्तान अभी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचने को ही थी, उससे पहले ही खत्म हो गई है। और दास्तान का नाम है केके। ये बात कहते हुए आज मेरी आंखें नम हो जाती हैं कि मशहूर और बेहद दिल अजीज गायक केके हमारे बीच नहीं है। केके हर घर में अलमारी में बहुत संभाल कर रखी एक कैसेट और सीडी है जो सदा रहेंगी। केके हमारे मोबाइल लैपटॉप पर मौजूद डिजिटल लाइब्रेरी में है, मेमोरी में है। मोहम्मद रफी साहब को हम सभी ने रफी साहब बुलाया, किशोर कुमार को किशोरदा, पर केके से एक याराना सा रहा हम सबका, हम सबके यार केके। न साहब न दादा, बस केके, जो टीनेजर और कॉलेज में जाते बच्चों का दोस्त है, जिसके गाने ऐसे लगते हैं जैसे हमारे लिए लिखे गए हैं और गाए गए हैं। 90s के दौर में, 90 के दशक में जिनकी आवाज का ऐसा जादू चला कि वो आज तक उतरने का नाम नहीं लेता, वो खुमारी वो नशा आज तक दिल पर तारी है। कितने दिलों ने उसी आवाज में कहा, मैंने दिल से कहा, सच कह रहा है दीवाना, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, तू ही मेरी शब है, तू ही सुबह है। और फिर सोचता हूं वही आवाज गा रही होगी इस वक्त, छोड़ाए हम वो गलियां,
1: तेरे आँखों को छुपाना तेरा

0: आज भी जब वो मंजर नजर आते हैं, दिल की वीरानियों को मिटा जाते हैं।
1: एक ब्रेक के बाद और भी बातें होंगी उनकी, जिनकी आवाज बहुत करीब है और हमेशा हमारे दिल में समाई रहेगी। स्टे कनेक्टेड।

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: बाइकी डन है मम्मा।
2: ड्यूटी
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
0: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोंक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट jyoti.com.sg।
4: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस डियर मस्ती दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस डियर मस्ती दिल से।
5: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
6: कोई बहुत ही अनोखा, कोई बिरला ही म्यूजिक लवर होगा जिसकी प्लेलिस्ट में के नहीं होंगे। दोस्ती के पल हो, प्रेम का लम्हा हो या हार्ट ब्रेक का सदमा, के हर वक्त मौजूद थे, उन्हें भुलाया नहीं जा सकता, न भुलाया जा सकेगा। के का जन्म हुआ था दिल्ली की एक मलयाली फैमिली में। तारीख 23 अगस्त 1968, 23 अगस्त 1968 को जन्मे के का नाम रखा गया कृष्ण कुमार कुन्नत, जिनको हम के नाम से पुकारते हैं, के नाम से जानते हैं। बचपन में उन्होंने सपना देखा डॉक्टर बनने का, इसलिए नहीं कि पढ़ने का बड़ा शौक था, ऐसी कोई एम्बिशन थी उनकी, ऐसा नहीं। डॉक्टर बनेंगे ये ड्रीम उन्होंने देखना शुरू किया उनके पड़ोस में रहने वाले एक अंकल से, जो एक डॉक्टर थे। डॉक्टर अंकल से वो बहुत इंस्पायर्ड थे, उनको लगता था कि उनके जैसा बनना है, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था, वो उन्हें अलग राह पर ले गई। घर में बड़ा म्यूजिकल माहौल था, लिहाजा राहें उन्हें वहां ले गई। के की मम्मी अक्सर घर में मलयाली गाने गाया करती थी, और उनके पिताजी उन्हें गाते हुए टेप पर रिकॉर्ड किया करते थे। केके ने कभी सिंगिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली, उन्हें तो बस बचपन से गाने सुनने का और साथ में गुनगुनाने का शौक था, तो वो भी गाते थे। शोले का महबूबा महबूबा गाना उनका फेवरेट था, घंटों गाते रहते थे, तो पापा मम्मी के दोस्तों सहेलियों के आगे परफॉर्म करते हुए केके बड़े हो रहे थे। केके सेकंड क्लास में थे जब उन्होंने पहली बार अपने स्कूल के स्टेज पर गाना गाया था, और गाना था 1973 में रिलीज हुई फिल्म राजेश खन्ना की थी ना, राजा और रानी, उसका एक गाना था जब अंधेरा होता है। इस नन्ही सी उम्र में इस मुश्किल गाने को उन्होंने इतनी बेहतरीन तरीके से निभाया कि पूरा स्कूल स्तब्ध रह गया, आश्चर्यचकित हो गया, तालियों की गड़गड़ाहट रुक नहीं रही थी, गूंजता रहा हॉल। और यही एक पल था जब केके ने सोचा कि उन्हें सिंगर बनना है। उनके गाए कुछ और गाने सुन लेते हैं, और उसके बाद और भी बातें करेंगे केके की। रेडियो मसी 24/7 लाइव की ओर से केके को एक छोटी सी ट्रिब्यूट।

0: Aamir Khan wondered.
1: Wow, look, I could have thought of anything. That's amazing.
0: Salman Khan wanted answers.
2: कैसे किया ये?
0: R. Madhavan said.
3: Awesome.
2: You're very good, yaar. Very well done.
0: And Boman Irani?
4: I say this with great respect. This is actually it's blown my mind.
0: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
5: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhani.
0: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wow! Wonderful escapades and epic encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
6: How do you know these things? Stop reading my mind.
7: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ
8: रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव पर आप हैं समर के साथ और सुन रहे हैं लेजेंड्स। आज उसकी दास्तान जो दास्तान कहते कहते सो गया, केके, जिनका गाना याद आएंगे ये पल के बिना हिंदुस्तान के कोई भी स्कूल कॉलेज का फेयरवेल फंक्शन कंप्लीट ही नहीं होता। वो सिंगर जिसका यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है गाना दो दशक बाद भी फ्रेंडशिप एंथम बना हुआ है, जिन्हें लोग नए दौर का किशोर कुमार भी कहते हैं। महबूब ने लिखे ये गाने, यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है और याद आएंगे ये पल। ये खूबसूरत बोल थोड़े फीके रह जाते अगर इसमें केके की आवाज की चाशनी नहीं घुली होती। मैं गलत तो नहीं कह रहा? केके, जिन्होंने बॉलीवुड के कई बड़े सितारों को आवाज दी। सलमान की जब पहली बार तड़प तड़प के दिल से आह निकली थी, उसके पीछे आवाज केके ही थे। शाहरुख को जब आंखों में अजब सी अदाएं दिखी थी, उस वक्त भी केके की ही आवाज थी जो दिल पर असर कर रही थी। उस वक्त पीक पर चल रहे इमरान हाशमी की तो केके ऑफिशियल वॉइस कहलाए जाने लगे थे। केके के गाने मिलेनियल्स के पहले और भाई सच्चे वाले प्यार के हमसफर रहे हैं। आज भी सबके पुराने पीसी की हार्ड ड्राइव के लव सॉन्ग्स वाले फोल्डर में केके के जिंदगी दो पल की, तू ही मेरी शब है, अभी अभी जैसे दर्जनों गाने सेव होंगे। इन्हीं गानों की वजह से केके सबके फेवरेट रहे, मॉडर्न टर्म्स में कहूं तो इंटरनेट डार्लिंग बने। केके ने लव स्टोरीज में सिर्फ गाने ही नहीं गाए बल्कि उनके खुद की लव स्टोरी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। केके सिक्स्थ क्लास में थे, छठी क्लास में उनके साथ पढ़ती थी ज्योति। दोनों की दोस्ती हुई और धीरे धीरे प्यार हो गया। बड़े हुए तो शादी की बात चली। ज्योति के घर वालों ने साफ मना कर दिया, कहा कि भैया पहले कुछ नौकरी वोकरी ढूंढो, कुछ कमाओ वमाओ, इसकी शादी कैसे कर दें तुमसे जब तक तुम कोई नौकरी नहीं कर लेते। अब वो क्या करते, शादी तो करनी थी, ब्याह के खातिर तलाशने लगी नौकरी। मार्केटिंग की जॉब उन्हें मिल गई। ज्योति के घर वालों ने देखा कि लड़का कमाऊ हो गया है तो ज्योति और केके की शादी करवा दी गई, राजी हो गए थे इसके लिए वो। केके ने ज्योति से शादी करने के लिए नौकरी तो कर ली थी, लेकिन कुछ ही महीनों बाद वो नौकरी करते करते उकता गए थे, पकने लग गए थे। वो जो म्यूजिक के लिए बने थे, यहां उनका दम घुटता था। लिहाजा एक दिन केके ने नौकरी छोड़ दी और सिंगिंग लाइन में ही करियर बनाने की ठान ली। और उनके इस डिसीजन में उनका सबसे ज्यादा सपोर्ट किया उनकी पत्नी ज्योति ने, और फिर पूरी फैमिली भी उनके सपोर्ट में आ गई। आगे क्या हुआ सब कुछ बताऊंगा मैं। उनका सफरनामा जारी है रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। फिलहाल उनके गाए हुए ये बेहतरीन गाने हम सुनेंगे।

0: स्पीकर पे लगा देना।
1: बाय की डन है मम्मा।
2: ड्यूटी
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
1: मैं उठता था।
4: तेरी मेरी बनती नहीं, पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करें ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ, वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप, अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट jyoti.com.sg।
5: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
6: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
7: Namaste, bahno aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: हेलो एंड वेलकम बैक, मैं हूं समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। आज हम केके को एक म्यूजिकल ट्रिब्यूट दे रहे हैं, आज का लेजेंड्स उन्हीं के नाम। तो मैंने आपको बताया कि केके ने गाने की राह चुनी और नौकरी को छोड़ दिया। वैसे एक मार्केटिंग की जॉब थी उनकी, उसमें बिल्कुल मन नहीं लग रहा था और मार्केटिंग में प्रेशर तो आप जानते हैं कितना होता है। तो उन्हें लगा कि मैं अपना पैशन फॉलो करता हूं, शायद मैं कुछ कर जाऊं। पैशन था उनका म्यूजिक। तो उन्होंने क्या किया, एक कीबोर्ड खरीद लिया और एडवर्टीजमेंट्स के लिए जो जिंगल होते हैं ना, वो बनाने लग गए। वो उन्होंने बहुत सारे जिंगल्स गाए साहब, बहुत सारे। आपको शायद पता भी ना हो, ये आवाज सुनिए आप शायद पहचाने। पहचाना, ये केके की आवाज है। केके ने शंकर एहसान लॉय के लॉय मेंडोंसा के साथ मिलकर एक बेहद फेमस जिंगल गाया था और वो था ये। इस जिंगल के म्यूजिक डायरेक्टर थे रंजीत बारोट। उन्होंने केके से पूछा कि वो जिंगल गाने का कितना पैसा लेंगे। अब केके को तो इंडस्ट्री की रेट्स का कुछ पता नहीं था, तो उन्होंने कहा जो सबको देते हैं वही दे दीजिएगा। रंजीत ने केके की बात सुनी और पांच उंगलियां उनकी ओर दिखाई। केके को लगा शायद रंजीत 500 रुपए कह रहे हैं, उन्हें लगा यही इंडस्ट्री का रेट होगा, वो मान गए। बाद में जब उनके पास चेक आया तो वो खुशी से उछल गए, क्योंकि चेक 500 का नहीं 5000 का था। थोड़े ही वक्त में केके 3000 से ज्यादा जिंगल्स गा चुके थे, बना चुके थे और इस काम के केके को पैसे भी अच्छे मिलने लग गए थे। लेकिन कहीं ना सेटिस्फेक्शन मिस था। सालों पहले वो मशहूर गायक हरिहरन से मिले थे और उन्होंने उन्हें सजेस्ट किया था कि देखो अब ये सब छोड़ दो और मुंबई आ जाओ। उनकी ये बात केके के जहन में थी और केके के मन में ना बचपन से ही अपना एक म्यूजिक एल्बम बनाने की तमन्ना थी। केके ने एक बार फिर हिम्मत दिखाई और इस बार मुंबई के लिए रवाना हो गए। आगे की कहानी एक ब्रेक के बाद बताता हूँ आपको मैं। सुनते रहिए लेजेंड्स, आज केके की कहानी समर की जुबानी।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
4: वेलकम बैक। आज हम याद कर रहे हैं केके को हमारे लेजेंड्स केके स्पेशल शो में। जिंगल बनाने के दौरान एक मजेदार वाकया हुआ, आपको सुनाता हूँ। साल 1998 की ये बात है। उस वक्त प्रीतम, केके, विशाल शेखर जैसे कई सिंगर और म्यूजिशियंस दिल्ली एड एजेंसीज में काम किया करते थे। प्रीतम और केके आपस में अच्छे दोस्त थे। एक दिन फेमस स्टूडियोज के टॉयलेट में प्रीतम और केके मिल गए। प्रीतम ने टॉयलेट में ही मीटिंग शुरू कर दी। केके से बोले, भाई एक बढ़िया गाना बनाया तेरे लिए। केके बोले, भाई बाहर तो चल ले, यहीं सुनाएगा क्या। जैसे ही टॉयलेट से बाहर निकले, प्रीतम ने सामने कुर्सी पे रखा अपना गिटार उठाया और गाने लगे। केके को गाना बहुत पसंद आया। प्रीतम ने कहा, एक दिन ये गाना मैं तेरे साथ रिकॉर्ड करूंगा। बात यहां खत्म हो गई। सन 2006 आ गया। प्रीतम और केके अब दोनों फेमस बन चुके थे, नाम हो गया था उनका। एक रात प्रीतम ने अचानक केके को कॉल किया, भाई भाई तुझे वो गाना याद है जो मैंने तुझे टॉयलेट के बाहर सुनाया था। आधी रात को नींद से जागे बेचारे केके को बहुत देर दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़े और फिर उन्हें याद आ गया वो इंसिडेंट। प्रीतम ने कहा, बस वही गाना रिकॉर्ड करना है। वो गाना लाइफ इन मेट्रो फिल्म के लिए था। केके ने हामी भर दी। अगले दिन गाना रिकॉर्ड किया, गाना ब्लॉकबस्टर बन गया। वो गाना था वेरी फेमस ट्रैक अलविदा। ओ माय गॉड, कितनी बातें याद आती हैं केके की। मुझे जो भी याद आता जा रहा है मैं आपको बताता जा रहा हूं। बहुत सारी यादें, सिर्फ यादें, अनगिनत यादें वो छोड़कर चले गए हैं। चलिए फिलहाल यहां पर एक ब्रेक ले लेते हैं। इन गानों से जुड़ी आपकी यादें भी आप हमें बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर आकर। इंतजार रहेगा।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: आज लेजेंड्स में केके की कहानी आप सुन रहे हैं समर की जुबानी। वेलकम बैक। साल 1994 में 1994 में केके मुंबई आ गए थे। वहां आकर उन्होंने अपनी एल्बम को लॉन्च करना चाहा, लेकिन राहें इतनी आसान तो होती नहीं है। इस बीच विशाल भारद्वाज से उनकी दोस्ती हो गई। विशाल भारद्वाज को अपना कीबोर्ड वो दे दिया करते थे कंपोज करने के लिए। विशाल इस बीच गुलजार साहब की फिल्म पर काम कर रहे थे। उन्होंने केके को बोला कि यार तेरे लिए काम है, एक गाना है छोड़ आए हम वो गलियां, उसमें शुरुआत की ये लाइंस गानी है जिसमें आलाप भी है, तू गाएगा तो अच्छा रहेगा, गुलजार साहब की फिल्म है। केके ने हाँ कर दिया, उन्होंने गा दिया। जब उन्होंने वो गाना छोड़ आए हम वो गलियां गाया तो ये सुनकर सभी लोग खुश हो गए, सबसे ज्यादा तो गुलजार साहब, बहुत तारीफ की उनकी। लेकिन इसके बाद केके को कोई काम नहीं मिला। माचिस के बाद फिल्म 5 में एक बेहतरीन ट्रैक गाया केके ने, लेकिन वो रिलीज ही नहीं हुई। हम पंछी एक डाल के नाम से एक फिल्म मिली मगर वो भी पूरी नहीं हुई। लिरिक्स डायरेक्टर महबूब से उनकी काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। शेखर कपूर की तारा रम पम पम के गाने के लिए महबूब एक दफा गए हुए थे AR रहमान के स्टूडियो। उनके साथ केके भी थे। वहां आए थे इस्माइल दरबार। महबूब जी ने इस्माइल जी से मिलवाया। उन्होंने केके को कुछ महीने बाद मीटिंग के लिए बुलवाया। इसके बाद उन्हें गाना दिया गया तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही। पहली बार उन्हें इस तरह का सूफियाना गाना गाने को मिला था।

से प्लान कर रहे थे, उसने तो बवाल मचा दिया, दिलों में तूफान ला दिया। मुझे याद है उस वक्त एक बहुत ही मशहूर कैसेट की एक चेन हुआ करती थी इंडिया में, और वहां पर ही उनके सीडीज मिला करते थे। मैं एल्बम पल की बात कर रहा हूँ, और अक्सर पल आउट ऑफ स्टॉक होता था, मिलता ही नहीं था, इतनी ज्यादा डिमांड थी इस एक एल्बम की। ब्रेक के बाद और भी किस्से सुनाऊंगा, आप तब तक ये गाने सुनिए।

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: भाई की डन है मम्मा।
2: ड्यूटी
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
0: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोकझोंक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट jyoti.com.sg।
4: आप सुन रहे हैं समर के साथ लेजेंड्स फिर से।
5: साल 1999 में सोनी म्यूजिक लॉन्च हुआ और लॉन्च हुए के डेब्यू एल्बम थी पल। हम रहें या ना रहें याद आएंगे ये पल, हमें तो के याद आ रहे हैं इस वक्त। मेरा पर्सनल फेवरेट इस एल्बम में एक और था, आपकी दुआ है मुझे प्यार, वो बहुत ऊंचा गाया हुआ है। इसके बाद कई ऑफर आए के को, वो फिल्मों में गाते रहे, काम आगे बढ़ता गया। यह किस्सा याद आता है, सलमान की बजरंगी भाईजान में के का एक गाना था तू जो मिला, बहुत ही अद्भुत गाना। लेकिन इसके बनने की कहानी और भी ज्यादा अद्भुत है। तो हुआ ये कि केके अपनी फैमिली के साथ ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे छुट्टी मनाने। ऑस्ट्रेलिया आए हुए उन्हें दो दिन ही हुए थे कि उनके पास प्रीतम का फोन पहुंचा। प्रीतम ने केके से कहा कि एक गाना अर्जेंटली रिकॉर्ड करना है। केके ने बताया कि वो तो फैमिली के साथ सिडनी आए हुए हैं, एक महीने बाद अब आएंगे इंडिया। प्रीतम तो अपने स्वभाव अनुसार बड़बड़ाए हुए थे ही, उन्होंने कहा कि यार कैसे भी हो वहीं से रिकॉर्ड करके भेज दे। इतना कहकर प्रीतम ने लिरिक्स और ब्रीफ केके को मेल कर दी। अब केके ने यह बात अपनी पत्नी ज्योति को बताई कि उन्हें गाना रिकॉर्ड करना है। ज्योति केके पर थोड़ी झुंझलाई, लेकिन केके ने समझाया प्रीतम का गाना है, वो भी कबीर खान की फिल्म के लिए। कबीर और केके बचपन के दोस्त थे और एक साथ स्कूल में पढ़े थे। खैर केके रिकॉर्डिंग करने स्टूडियो पहुंच गए। ये पहली बार था जब वो विदेश में रिकॉर्डिंग कर रहे थे अकेले, ना म्यूजिक डायरेक्टर था ना कोई और जो ये वेरीफाई करता कि गाना अच्छा जा रहा है या बेकार। केके ने आइडिया लगाया कि शायद प्रीतम को ऐसा चाहिए और उन्होंने गाने की चार चार लाइनें रिकॉर्ड कर करके प्रीतम को भेजना शुरू कर दिया। उन्हें पसंद आई, लेकिन है इसमें एक लेकिन। क्या ये एक ब्रेक के बाद बताता हूँ आपको मैं। स्टे कनेक्टेड सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: हाँ जी, वेलकम बैक। तो के उन दिनों छुट्टी मनाने गए हुए थे ऑस्ट्रेलिया, जब प्रीतम ने उनको कॉल करके बुलाया लेकिन वो नहीं आए, और वहीं से गाना गाकर उन्होंने रिकॉर्ड कर भेजा। पहली बार ऐसा हुआ कि वो वहां से गा रहे थे, सिडनी से, और गा रहे थे मुंबई में बैठे हुए प्रीतम के लिए। उनके पास उनको म्यूजिक के बारे में गाइड करने वाला कोई नहीं था, कैसे गाना है ये भी नहीं पता। गाना तो था, पहली बात तो कबीर खान की फिल्म थी, उनके दोस्त थे बचपन के। दूसरा, प्रीतम ने उन्हें कहा था, वो चार चार लाइन रिकॉर्ड करके प्रीतम को भेज रहे थे। इस पर प्रीतम ने कहा, भाई ऐसे बार बार मुझे मत भेज, तेरा गाना है तू अपने हिसाब से गा, जैसे तूने पिछले गाने गाए हैं ना वैसे गा दे। केके ने ऐसे ही किया। दो ढाई घंटे बाद रिकॉर्डिंग कंप्लीट हुई। केके ने प्रीतम को फाइनल प्रोडक्ट भेजा। प्रीतम को केके का गाना इतना पसंद आया कि उन्होंने बिना कोई एडिट किए जस का तस गाना सलमान खान और कबीर खान को फॉरवर्ड कर दिया। दोनों को गाना इतना ज्यादा पसंद आया कि उन्होंने प्रीतम से कहा, इसमें एक अंतरा और जोड़ दो, गाने की लेंथ थोड़ी और बढ़ा दो। कुछ दिन बाद जब इंडिया वापस आए केके, तो नई लाइनें जोड़कर इस गाने को और आगे बढ़ाया गया। तू जो मिला तैयार हुआ, जिस पर आज यूट्यूब पर तकरीबन 7 करोड़ व्यूज हैं। केके हमेशा से मीडिया से दूरी बरतने वाले बहुत ही लोकी इंसान थे। जहां उनके साथ के बाकी सिंगर्स टीवी चैनल्स के सिंगिंग रियलिटी शोज में बतौर जज रेगुलरली नजर आते थे, केके ने सिर्फ एक रियलिटी शो किया था, फेम गुरुकुल। और जब मैंने फेम गुरुकुल का जिक्र किया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी शो में अरिजीत सिंह भी आए थे। तो बड़ी कमाल की बात है, देखिए उन्होंने ही जज किया होगा अरिजीत सिंह को। लेकिन फिलहाल बात केके की। पिछले कुछ सालों में वो बतौर सिंगर पूरे तौर से एक्टिव भी नहीं थे, लेकिन हर साल उनका एक आध गाना उतर ही आता था मैदान में। आलिया भट्ट संजय दत्त की फिल्म सड़क 2 में उनका गाना आया शुक्रिया, और ये बहुत ही हिट हुआ। इसके बाद कार्तिक आर्यन और सारा अली खान की लव आजकल में उनके गाए गाने तन्हा ने भी खूब तारीफें बटोरी थी। लेकिन उनके ऐसे गाने अब इक्का दुक्का ही आ रहे थे। वो दौर ही अलग था जब पूरी एल्बम में केके छाए रहते थे और पूरी एल्बम ही हिट हुआ करती थी। चलिए फिलहाल तो उनके गाए ये गाने सुन लेते हैं, एक से बढ़कर एक। मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका सक्सेस रेशियो 100% होता है। केके उन्हीं में से थे, जो गा देते थे वो हिट। ये सुनिए।

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
2: के ऐसे सिंगर थे जिनके आपको 20 गाने एक साथ बताने को कहा जाए तो शायद आप 20 एक साथ ना बता पाएं, लेकिन अगर आपको एक एक करके सुनाए जाएं गाने तो आपकी आंखें हैरत से चौड़ी होती चली जाएंगी। क्या रे, ये केके ने गाया? हाँ, ये भी तो केके ने गाया है, ये भी, अच्छा ये भी। ऐसी कितनी बातें हैं जो केके के बारे में हम सब नहीं जानते, या जानते भी हैं तो उन्हें हमने याद करना नहीं सीखा। लगा कि हम केके के साथ आगे बढ़ रहे हैं, याद तो उन्हें किया जाता ना जिन्हें भूल जाते हो। ये सुनिए। याद आया, साल 1999 में वर्ल्ड कप के बड़े मंच पर उतरने वाली इंडियन क्रिकेट टीम में जोश भरने के लिए बने थीम सॉन्ग जोश ऑफ इंडिया को केके ने अपनी आवाज दी थी। इस गाने के लिरिक्स तो जोशीले थे ही, लेकिन उसे अजहर एंड कंपनी की रगों में उतारने का काम किया था केके की दमदार आवाज ने। इस सॉन्ग ने न सिर्फ इंडियन टीम बल्कि इंडियन फैंस को भी बहुत इफेक्ट किया था, बहुत ज्यादा इंस्पायर किया था, बहुत ज्यादा मोटिवेट किया था। इस गाने ने टीम में जीत का जज्बा भर दिया था और इंडियन क्रिकेट फैंस के बीच काफी पॉपुलर हुआ था ये गाना। हालांकि ये बात अलग है कि उस वर्ल्ड कप में इंडियन क्रिकेट टीम सुपर सिक्स स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाई थी। फिर आया साल 2022 की 31 मई। ये वो तारीख है जब केके की एक कॉन्सर्ट के दौरान तबीयत बिगड़ी और वो इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए, अपने परिवार में एक बेटा और एक बेटी सहित एक पत्नी को छोड़कर वो चले गए हमेशा के लिए, जहां से कोई लौट कर नहीं आता। केके आज हमारे बीच नहीं है, पर वो जिंगल्स से लेकर फिल्मी गीतों, एल्बम से लेकर हर जगह पर मौजूद है। चलिए उन्हें याद करते हुए फिलहाल उन्हीं के गाए हुए ये गाने सुन लेते हैं।

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: बाइकी कौन है मम्मा?
2: ड्यूटी।
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
2: मैं उठता था।
0: तेरी मेरी बनती नहीं, पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करें ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ, वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप, अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट jyoti.com.sg।
4: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
5: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
6: Namaste, behno aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: खैर, भीगी तो हैं आंखें और दिल भी, मगर बहुत खूबसूरत सा कुछ पढ़ा तो मुझे लगा कि आपसे भी शेयर कर लेता हूं, आपको भी सुना देता हूं। सुनिएगा, खबर आती है कि चले गए एक आदमी जो पिछले 2 दशकों से एक के बाद एक दिल चीरने, आंख भिगोने, मन मसोसने, पहले प्यार के एहसास को नाम देने वाले गाने गा रहा था, अचानक से चला गया। क्या कहेंगे आप इस पर कि तुमसा कोई ना होगा के काश तुम न जाते के अभी तो तुम्हें और गाना था, हाय तुम्हारी आवाज अभी तो और सुननी थी। ये भी कोई उम्र होती है जाने की, जो शब्दों के खिलाड़ी हैं वो लिख देंगे उफ तुम चले गए, जैसे अमावस के दिन आसमान से चांद चला जाता है, पर मौजूद रहोगे तुम याद में, जैसे चांद न दिखते हुए भी होता है, जैसे चाय में चीनी न दिखते हुए भी होती है, फलाना फलाना पता नहीं क्या क्या। कैसे बताए कोई कि अचानक से उसी बचपन और तरुणाई के बीच की रेखा पर पहुंच गए हैं, जहां सीने में दिल भी है, इसका एहसास पहली बार हुआ था और आज भी वो दिल वैसा ही कसक सा रहा है, और डर के मारे तुम्हारा गाना सुनने की भी हिम्मत नहीं हो रही। संभालने वाला कोई नहीं है, हम में से न जाने कितने लोग वापस 16-17 साल के किशोर बन गए होंगे, जिनको पहली बार जब इश्क हुआ था तब तुम उनके साथ थे, और पहली बार जब दिल टूटकर चकनाचूर हुआ था तो तुमने उनके आंसू संभालने का एक बहाना दिया था। स्कूल के फेयरवेल पर हम रहें या न रहें, कल याद आएंगे ये पल, बजे बिना कहां कुछ पूरा होता था, और तुम खुद भी तो उन स्कूलों की यादों का हिस्सा थे, एक दोस्त जैसे। नाम भी वैसे ही था तुम्हारा, के, जैसे अपने बचपन के जिगरी यार को बुला रहा हो कोई। अरसे बाद लैंडलाइन पर वही दूर शहर से कॉल करते हो, और के बता कैसा है यार, लाइफ कैसी चल रही है, सुनना फ्री है तो घर आ जा। तुम्हारे गानों की सीडी एक्सचेंज किया करते थे लोग, पता है ना, अगर कोई किसी को इंप्रेस करना चाहता था तो कहता था कि हम तो केके के फैन हैं, भले किसी को तुम्हारा पूरा नाम याद हो ना हो, लेकिन केके का फैन होना माने अच्छे म्यूजिक टेस्ट की गारंटी। कितने तो लोग थे जो अपने मन में जन्नत का प्रपोजल सीन बिठाए थे और उसके बैकग्राउंड में तुम्हारी आवाज, आवाज तो अब भी रहेगी यार केके, जाएगी नहीं कहीं। 50 रुपए के फोम कवर वाले कान में चुभते ईयरफोन से लेकर ये 5,000 वाले एयरपॉड्स तक, तुम ही तो रहे हो साथ में, तुम्हारी आवाज सुनते सुनते ये स्कूली बच्चे कमाने धमाने वाले गृहस्थ हो गए, पर लौट लौट कर तुम्हारे गानों तक वापस आते रहे, आगे भी आते रहेंगे, बस दुख इस बात का होगा कि लौट पाने के लिए कोई एक नया ठिकाना नहीं दोगे तुम। ऐसे कौन जाता है यार, ऐसे भी कोई जाता है, कितनी सारी यादें, कितने सारे इमोशंस इस एक मैसेज में समाये हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने भी केके को याद किया होगा, मिस किया होगा, जैसे मैंने किया, जैसे तमाम उनके फैंस ने किया। फिर से मिलेंगे, मैं समर हूं, ये रेडियो मसी 24/7 लाइव है। भगवान न करे कि अगली बार जब मैं आऊं तो ऐसी कोई कहानी लेकर आऊं जो अब अचानक हमें छोड़कर चला गया हो, लेकिन मैं सुनाता रहूंगा ऐसे ही शख्सों की कहानियां जो दास्तान बन गई, सदियों तक सुनाई जाएंगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर।

0: इस वीकेंड वॉज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वॉज अ गर्ल, इस वीकेंड वॉज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वॉज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: बाइकी डन है मम्मा।
2: जूटी
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
2: मैं उठता था।
0: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट ज्योति।

0: आप सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट
1: इट्स द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव हैव अ मस्ती भरा वीकेंड

0: यार नाटक लेकर, नचना यार नचना।
1: अरे अरे छोड़ो यार, मैं नहीं नाचूंगा वाचूंगा।
2: ओए पुत्र नचना, भैन की सगाई च तो भाई नचना ही पैंदा।
1: हाँ हाँ तो फिर बड़े भैया को नचाओ ना।
3: क्यों, तेरी भी तो भैन है।
4: ऐ गल चंगी बोली।
5: ओ कम ऑन शेखर, नाचो ना।
1: नहीं नहीं मुझे नहीं नाचना।

0: वीकेंड का मजा विद द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
1: We are the sounds of the streets.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Your

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
2: भाई की डन है मम्मा।
3: ड्यूटी
4: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
1: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट jyoti.com.sg। Best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: द परफेक्ट रेसिपी फॉर यू टू अनवाइंड, मस्ती वीकेंड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय?
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल? इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग?
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा?
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप?
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: बाय की डन है मम्मा।
2: जूटी
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
1: मैं उठता था।
0: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट jyoti.com.sg।
4: दस का बीस।
5: अरे अरे अब बस दस से दिल कहाँ भरेगा।
0: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters. It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a Masti Bhara weekend.

0: मेरा पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है, मिडवीक ब्लू, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
2: द परफेक्ट रेसिपी फॉर यू टू अनवाइंड, मस्ती वीकेंड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: इस वीकेंड वाज अ गाय.
1: वो आ गया, देखो वो आ गया.
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल. इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग.
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा.
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप.
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: माइकी डन है मम्मा।
2: जूटी
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
0: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोंक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट

0: Miss the show? This is the encore just for you on Radio Masti 24/7 Live. Singapore's only Hindi radio keeping you entertained on the go.
1: They are fresh. They are
2: They are happening.
1: From rocking the charts to ruling the countdown, yes, Masti Top 20. Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, the latest and the brightest. The week's top chart busters.
3: बिल्कुल जोश में रहिए, यहाँ पर रेडियो मस्ती 24/7 पर आ गई है. जी हाँ, दी ओरिजिनल ओनर ऑफ दिस शो, एंड कहते हैं ना ओजी, ओरिजिनल गैंगस्टर भी. गुड इवनिंग, 5:01 और यहाँ पर रेडियो मस्ती 24/7 पर रेणुका आपकी सेवा में. जी हाँ बिल्कुल, आपकी सेवा में बिल्कुल, हमेशा की तरह. क्यों नहीं, क्योंकि भाई ये वाला शो होता है मेरा फेवरेट. नॉट बिकॉज मुझे टॉप चार्ट्स पसंद है, ऐसा कुछ नहीं है. मुझे थर्सडे शाम पसंद है और मुझे आप लोग पसंद है और मुझे पसंद है हमारी गप्पे शप्पे. ठीक है, तो चलो वही करेंगे हम और खूब सारी बातें करेंगे. अब देखो यहाँ पर हमने किसी को हाल ही में एक हैम्पर भेजा था, 2-3 महीने पहले हमारा यहाँ पर एक कॉन्टेस्ट चल रहा था, हैम्पर भेजा था हमने जीजी मार्ट की तरफ से और उन्होंने खाना शुरू किया है. सब कुछ खा रहे हैं और उसमें जो जामुन ट्रायंगल्स हैं वो उनको बहुत ज्यादा भा गए. तो बोल रहे हैं हमें फोटो भेज के कि भाई डब्बा खत्म हो रहा है, कहां से ले हम बताइए. जीत के बैठे हैं और फिर भूल गए कि ये जिताया किसने था. यही होता है रेडियो मस्ती 24/7 पर, बिल्कुल यही होता है. तभी तो हमें आप इतने अच्छे लगते हैं. सो फ्रैंक and so useless many of you. Nevertheless, we love you because aap hi hamari choice. Radio Masti 24/7 par chal raha hai Masti Top Charts. Shuru karenge gaana number 20.

0: पता नहीं इतनी लड़ाई हुई यहाँ पर ऑफिस में हमारे आज कि भैया ये गाना हटा दो, मेरे को बहुत ढीला लगता है। बोला नहीं नहीं नहीं बहुत अच्छा चल रहा है, आपको कुछ नहीं पता होता, आप सुनते गाँव में। ओके, हमेशा की तरह हार मानती हुई रेणुका गाना नंबर 20 आपको चलाती हुई वापस आती हूँ। खबरें बिल्कुल करेंगे, गप्पे शप्पे मारेंगे, एंड ऑफकोर्स वी विल बी टुगेदर टिल 8 इन द इवनिंग। वेल अ ब्यूटिफुल थर्सडे इवनिंग गाइस, इन केस आप सुन रहे हैं इसका एनकोर, तो संडे है वो भी उतना ही ब्यूटिफुल है ना।
1: Trending song number 20.

0: बात है, मतलब क्या बात है। आवाज पहचानी आपने कि नहीं पहचानी? सीरियसली नहीं पहचानी? अरिजीत सिंह की आवाज भूल गए आप, और अमाल मलिक की आवाज भूल गए आप, और आपको लग रहा है कि ये आवारापन आपने पहचाना ही नहीं? क्या बात कर रहे हो यार। रेडियो मसी 24/7, जी हाँ, रेणुका के साथ यहाँ पर आप जुड़े हुए हैं मसी टॉप चार्ट्स पे। और अभी भी आपने सुना गाना नंबर 20। आप जानते हैं कि दिस ट्रैक इज एक्चुअली बाय द वन एंड ओनली अमाल मलिक। जी हाँ, नॉस्टैल्जिया एब्सोल्युटली। हमको 2007 की वो वाली फिल्म याद आ रही है, तेरा मेरा रिश्ता कंटिन्यूज या तो फिर आओ दोबारा, है ना? वो वाले गाने नहीं याद आ रहे आपको इसको सुन के? बट वेल, ऑन रेडियो मसी 24/7 गाइस, दिस इज आवारापन 2 का साउंड ट्रैक एंड द टाइटल ट्रैक, एंड दैट टुक नंबर 20। नंबर 20 के बाद में हम नंबर 19 पर भी जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए एक प्यारा सा फ्लैशबैक में जाएंगे और गाना सुनेंगे छन छन करते हुए। वन अमेजिंग ट्रैक फ्रॉम मुना भाई MBBS कमिंग अप राइट नाउ रेडियो मस्ती 24/7 पर।
1: बॉलीवुड फ्लैशबैक।

0: क्या गाना है मुन्ना भाई MBBS का, ये छन छन। मैं यहाँ बैठे बैठे भूल ही गई कि यार ये गाना चल रहा है और मुझे इसके बाद बोलना है। मैं बिल्कुल भूल गई थी। रेडियो मस्ती 24/7, वेलकम वेलकम। जी हाँ, धीरे धीरे सब टुनकते हुए यहाँ पर आ रहे हैं। सलमा जी गुड इवनिंग, पधार गई हैं आप। आज तो 90s का शो था, उसमें तो आपका फुल ऑन एक्शन होगा, है ना। एक्चुअली आज छुप के मैं भी 90s का शो सुन रही थी। नॉट बैड, नॉट बैड।
1: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक, फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
0: भाई आज की खबर कुछ ऐसी है कि हमने हमारे सोशल मीडिया पर बड़ा छोटा सा सवाल पूछा है, छोटा सा है पर काफी भारी है। हमने ये कहा है कि हम आपको दे रहे हैं $1 million, चाहिए चाहिए तो फिर पहली बात तो हमारा शो सुनो, और दूसरी बात ये कि हमारे सोशल मीडिया पर जाके ये बताओ कि भाई साहब अगर तो आपको आज के दिन में $1 million मिल गए तो आपका रिएक्शन क्या होगा, और रिएक्शन जो होगा सो होगा, आप सबसे पहले किस चीज पर वो खर्चोगे। तो भाई हमारे लिसनर्स हमेशा की तरह बहुत ही डेढ़ शाने, सबसे पहले सपना जीवा लिख रही है, पहले हाथ में आने दो फिर सोचेंगे क्या करना है, सपने देखने से क्या फायदा। अरे सपना जी, अगर आप सपने नहीं देखोगे तो कौन देखेगा सपने। रेडियो मस्ती 24/7 पर जब तक बेटा सपने नहीं देखोगे तो हकीकत में कैसे वो चीज तुमको मिलेगी, बताओ। चलिया, मैं गलत गा रही हूँ लेकिन गाना बहुत बढ़िया है। जी हाँ, द रिश, और जैसे कि आप जानते हैं इसमें अलका याग्निक की आवाज है, उनका आखिरी गाना है। रेडियो मस्ती 24/7 पर सुनते हैं ये वाला गाना, विच इज ऑन नंबर 19।
2: जब राजस्थान की हवाएं सिंगापुर के शाही स्वाद में घुल जाए, जब लाल मांस, दाल बाटी चूरमा, केर सांगरी और मीठे मीठे घेवर की खुशबू दिल को छू जाए, जब शाही महारानी नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट लेकर आए द रॉयल फ्लेवर्स ऑफ राजस्थान का एक्सक्लूसिव 10-day फेस्टिवल, तो बस बात शाही बन जाए। Royal Flavors of Rajasthan by Shahi Maharani North Indian Restaurant, 14th to 23rd August. Reserve and prepay online to enjoy the early bird menu at just $78 plus per person. Exclusively for dinner. Book your royal experience today at www.shahimaharani.com.
3: Trending song number 19.
4: मेरी आंखें सोती हैं मगर ये दिल जागता है, मेरी प्यारी चलिया चलिया।

0: आपको इतने प्यार से बुलाएगा तो भी अगर आप नहीं आओगे तो फिर कितने क्रूर किस्म के इंसान हो जाओगे आप। क्या हाल चाल है भाई, रेडियो मस्ती 24/7 पर यहाँ पर हम सभी को बोल रहे हैं कि भाई हम यहाँ पहुंच चुके हैं बिल्कुल, और आप ही का इंतजार है। सपना जी जरा हॉटलाइन पर लिख लीजिए, मैं अपना पर्सनल फोन इस समय देख नहीं रही हूँ। कुछ कुछ लोगों के पास मेरा ना पर्सनल नंबर है, आप मान नहीं सकते, और ना वो ना मेरे को वहीं पर लिखते हैं इवन ड्यूरिंग द शो। हाँ किस तरह से स्निचिंग करने में मजा आ रहा है मेरे को इस टाइम। बट यू नो व्हाट, आई वांट टू टेक यू टू दिस न्यूज व्हिच हैज बीन अराउंड एक्चुअली। अब आपका क्या कहना है इस बारे में कि भाई बड़े बड़े जो स्टार्स हैं हमारे बॉलीवुड के, शाहरुख खान है, अजय देवगन है, टाइगर श्रॉफ है, ये सारे के सारे जब जाके विमल इलायची की एडवर्टाइजमेंट में आते हैं और उस तरह के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं तो इनकी अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो वेल FDA विच इज द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ महाराष्ट्र, उन्होंने इशू किया है एक शो कॉज नोटिस इन तीनों एक्टर्स को, आस्किंग देम टू एक्सप्लेन कि भाई क्या है तुम्हारा सिलसिला इस एडवर्टाइजमेंट के साथ, 15 दिन के अंदर अंदर बताओ, बिकॉज बहुत ही जरूरी है, और साथ ही में अपने डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करो जो कि बताएंगे कि आपने एंडोर्स जब किया ये वाला प्रोडक्ट तो आपने क्या एग्री किया था। ठीक है, अपना एग्रीमेंट दिखाओ और ये दिखाओ माल कितना अंदर किया है। वेल ये जो रेगुलेटर है उन्होंने डायरेक्ट किया है इन एक्टर्स को टू स्टॉप पार्टिसिपेटिंग इन द एडवर्टाइजमेंट्स एंड रिमूव प्रमोशनल मटेरियल, जो भी उनके ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट है, वेबसाइट है, अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जो उनके कंट्रोल में है, हटा दो, लोगों को गंदी आदतें मत डालो, एंड विच इज राइट है ना, क्योंकि कैंपेन ब्रीफ्स हैं, पेमेंट्स हैं, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है, आपको क्या कहा गया था सारी चीजें हमको पहले से दे दो, नहीं तो बाद में जाके क्या बोलते हैं ये लोग जब खिसकते हैं कि भाई हमें तो ये कहा था कि ये होगा, हमें तो वो कहा था वो होगा, लेकिन हुआ कुछ और। तो बेटा आप बिल्कुल फंस चुके हैं इस टाइम पर, लोगों को गंदी आदतें लगाते हो और खुद पतली गली से हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारी। रेडियो मस्ती 24/7 पर आप नेक्स्ट इज गाना नंबर 18। ये गाना कौन सा है, हम कुछ दिनों से ये चला रहे हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ट्रैक एंड आई नीड यू टू लिसन टू दिस वन। ऑलराइट, कमिंग अप नेक्स्ट रेडियो मस्ती 24/7 पर रेणुका के साथ मस्ती टॉप चार्ट्स।
1: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 18।

0: प्यारा गाना है। नहीं, दिस इज फ्रॉम बटवारा 1947। आपने फिल्म देखी है या नहीं देखी है? सीरियसली अगर नहीं देखी है तो चल दो, साथ साथ चलते हैं देखने के लिए, बिकॉज आई बीन हियरिंग सच गुड रिव्यूज अबाउट दिस फिल्म कि मन कर रहा है कि या तो जल्दी से ये OTT पर आ जाए या फिर मैं जाकर आराम से पॉपकॉर्न लेके और अपनी एक कोल्ड ड्रिंक लेके वहां पर बैठूं और देखूं। और यहां पर देखिए ना, मैं तो फिल्म जाने की बात कर रही हूं, कोई यहां पर सेकेंड हनीमून पर जाने की भी बातें कर रहा है। मतलब क्या बात है बॉस, क्या बात है, मजा ही आ गया।
1: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
0: जी बिल्कुल, योर डार्लिंग ऑन द एयरवेव्स, इट इज 5:30 और 50 सेकंड, रेडियो मस्ती 24/7 पर आप सुन रहे हैं रेणुका को। और आप जानते हैं कि मतलब यहाँ पर जो अभी भी गाना चल रहा था तबस्सुम, इट्स अ मैसिव कोलैबोरेशन, ऑस्कर विनर हमारे AR रहमान और लेजेंडरी लिरिसिस्ट जावेद अख्तर जी के बीच में, एंड ऑफ कोर्स आवाजें आपने सुनी सोनू निगम की अलोंग साइड द प्लेबैक सिंगर हीर। आप जानते हैं इस गाने का एक मतलब दो तरह का मीनिंग है इसमें, एक तो तबस्सुम जिसका मतलब होता है स्माइल या स्माइलिंग, राइट, इन उर्दू, एंड ऑफकोर्स यही नाम है कैरेक्टर का जिसको प्ले किया है ईशा संधीर ने उस फिल्म में, एंड दिस इज द लव इंटरेस्ट ऑफ द पोएट हबीब अनवर। क्या बात है, रेडियो मस्ती 24/7 पर। अगला गाना भी रोमांटिक ही रखेंगे क्योंकि जो लोग दूसरे हनीमून पर जाना चाहते हैं भाई, उनके लिए कंटिन्यू तो करना हमारा फर्ज है ना। यहाँ पर $1 million जेब में आए नहीं कि रोमांस ही रोमांस जागे जा रहा है, क्या बात है।
2: Musty Song of the Hour.

फ्रेंकली मैंने 2012 में इससे ज्यादा बेहतरीन कोई भी रोमांटिक गाना नहीं सुना होगा. वेल दिस इज ऑफ कोर्स फ्रॉम करण जौहर मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर एंड दिस मार्क द मेजर प्लेबैक सिंगिंग ब्रेक थ्रू नीति मोहन के लिए. जी हाँ, जिनको सडनली कॉल आई विशाल ददलानी से, उन्होंने कहा गाना गाओगी? गाऊंगी, ठीक है आ जाओ फिर. नीति मोहन, शेखर रवजियानी एंड ऑफ कोर्स सलीम मर्चेंट ऑन द वोकल्स. सुन रहे हैं आप इश्क वाला लव, कचोरी वाला आलू, ढोकले वाला बेसन. इश्क वाला लव.

0: Aamir Khan wondered.
1: Wow. Look, I could have thought of anything. That's amazing. Yeah.
0: Salman Khan wanted answers.
2: Kaise kiya ye?
0: R. Madhavan said.
3: Awesome. You're very good, yeah. Very well done.
0: And Boman Irani?
4: I say this with great respect. This is actually, it's blown my mind.
0: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
5: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhani.
0: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wow! Wondersoul Escapades and Epic Encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer, People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
6: How do you know these things? Stop reading my mind.
7: इमेजिन अगर कोई ये बता सके कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं, नहीं मेरे दिमाग में क्या आज है तू कहे तो मैं बता दूं, वो वाला हाल है सुहानी शाह का। सीरियसली मतलब लोगों के दिमाग के अंदर घुस के बताती है, सोच क्या रहे हो तुम? एंड दैट इज अमेजिंग। हजारों वीडियोस हैं इसके और वो हर बार जब स्टेज पे जाती है ना, शी एक्चुअली प्रूव्स इट। सीरियसली इट्स अ यूनिक एबिलिटी टू रीड माइंड्स। एंड ऑफ कोर्स जो ऑडियंस के साथ एंगेजमेंट है वो तो देखते ही बनती है। आपको देखना है, मैजिक वैजिक नहीं है, शी इज जस्ट अमेजिंग। और जब तक आप देखेंगे नहीं, आपको मैं जितनी भी भाषा में समझाऊं यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, बट यू नो यू हैव टू वॉच बिकॉज दिस इज your opportunity guys in Singapore. $69 se unki tickets ho rahi hain shuru, and of course this is happening on the 20th of September. Agar koi show miss karne ka mujhe waqai pehli bar dukh ho raha hai na, to wo ho raha hai is show ka, because I'm busy that day. बहुत गड़बड़ है, मैं सिंगापुर में नहीं होंगी। सीरियसली स्पीकिंग 6 बजे से है ये वाला शो 20th सितंबर को, एंड दिस इज सुहानी शाह एंड शी इज बैक ऑफ कोर्स टू कैप्टिवेट एवरीबॉडी। द शो इज कॉल्ड स्पेल बाउंड, एंड सीरियसली जब आप अंदर जाएंगे आप बोलेंगे मैं पकड़ लूंगा इसको, ये कैसे पकड़, कैसे देखती है, कैसे पढ़ती है, लेकिन द मोमेंट यू वॉक आउट आई टेल यू यू विल बी एब्सोल्यूटली स्पेल बाउंड। So you're all welcome to buy your tickets on cystic.com.sg, guys. Welcome. It's called Spellbound, and of course, it is Suhani Shah live in Singapore. And ye wala hai gana number 17, coming up next on Radio Masti 24/7 Masti Top Charts.
8: Trending song number 17.

0: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On मस्ती मीडिया नेटवर्क, we're opening a safe space. Dear मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
2: भाई की डन है मम्मा।
3: ड्यूटी
4: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
3: मैं उठता था।
1: तेरी मेरी बनती नहीं, पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन, इस नोकझोंक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ, वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप, अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट jyoti.com.sg।
5: यार इतना प्यारा गाना है ये, सारी उम्र हमें संग रहना है। अच्छा पता है क्या, मैं जब ज्योति स्टोर की बात करती हूँ ना, ठीक है रक्षाबंधन है, राखी है, इनफैक्ट विद इन 2 hours राखी डिलीवर कर देते हैं ये, यू नो दे से 2 दिन में करेंगे, बट दे डू इट विद इन 2 hours, इट इज लाइक दैट क्विक। एंड यू कैन ऑफकोर्स सेलेक्ट फ्रॉम jyoti.com.sg, जो उनकी ऑनलाइन साइट है, वहां पर जाके आप बिल्कुल अपनी राखी चूज कर सकते हैं। एंड इट्स जस्ट यू नो सो क्विक एंड ईजी। लेकिन मैं सिर्फ बात इस चीज की नहीं कर रही हूँ, मैं करना चाहती हूँ jyoti.com.sg पर उनके जो बाकी के सारी की सारी चीज़ें। You know, when I came to Singapore, तो पहली बार मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार दिवाली पे कहाँ जाएं, रक्षाबंधन पे कहाँ जाएं, कहाँ से लें चीजें, because obviously it was not that easy, right? And I tell you, Jyoti did an amazing job. ऐसे यूनिक चीजें वहां पर हो जाती है। इनफैक्ट आज के दिन भी अगर आप जाएंगे, प्रेशर कुकर से लेकर तवे से लेकर कढ़ाइयों से लेके, ठीक भी हो जाती हैं चीजें और नई वाली भी आप ले सकते हो। सो इट्स लाइक अ वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल द इंडियन कम्युनिटी, आई कैन प्रॉमिस यू दैट, इफ यू लुकिंग फॉर anything that you want for festivals or otherwise. And of course ab to Ganpati ji bhi aane wale hain, to agar aap dhoond rahe hain the perfect idol, then you can also go. And of course they have a beautiful catalog, sab kuch aapko shayad unke website pe nahi milega, lekin if you call them they can actually show you exactly ki kya kya unke paas hai. Uff, kamal ki dukaan hai, by god ki kasam dil khush ho gaya.
6: Taiya kaise bani kulori bina chatni.
5: And that is गाना नंबर 16 coming up. जी हाँ, मैं इसको हमेशा टॉप 5 में रखती हूँ इस गाने को, लेकिन somehow ये जब कोई और इस कुर्सी पे बैठता ना इस शो पे, मैं कहती हूँ बदल जाती है जिंदगी।
7: Trending song number 16.

वाकई इस गाने को सुन के बिल्कुल ऐसा लगता है कि कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। कुमार सानू की आवाज इस समय आप सुन रहे हैं 1942 अ लव स्टोरी। जी हाँ, इसमें आपने किसको देखा था, कुछ याद है? मनीषा कोइराला के साथ में कौन था एक्टर, कौन था?

0: एग्जैक्टली ऐसी ही फीलिंग होने वाली है आपको जब आप जाएंगे टू द जर्नी ऑफ इंडियाज रॉयल डेजर्ट किंगडम. जी हाँ, शाही महारानी लेकर आया आपके लिए रॉयल फ्लेवर्स ऑफ राजस्थान सिंगापुर में सिर्फ और सिर्फ 10 दिन का ये फेस्टिवल. आप जानते हैं कि अब से लेकर चल रहा है 23 अगस्त तक. जी हाँ, इट्स ओनली टिल दिस वीकेंड. जहाँ पर कहते हैं ना द लैंड ऑफ किंग्स राजस्थान का क्यूजीन, ऐसा कोई और नहीं है खाना पूरे के पूरे भारतवर्ष में. मतलब उनका कहना बिल्कुल सही बात है. आप अगर देखेंगे तो इसमें किस तरह का मेन्यू है वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में, एंड ऑफ कोर्स इट इज $78 प्लस प्लस पर पर्सन. लेकिन अगर आप मेन्यू देखेंगे तो आपको लगेगा जोधपुरी गट्टे की सब्जी, पनीर पापड़ की सब्जी, लाल मांस, राजस्थानी मुर्ग के सोवेटा. मतलब मैं कहती हूँ ये क्या क्या है यार, इनके तो नाम से ही लग रहा है. आलू प्याज की सब्जी, केर सांगरी, दाल बाटी चूरमा, मोतिया पिलाव, मिसी और बाजरा की रोटी, हाय हाय घेवर. मतलब हेलो, मत दिखाओ तेवर, चले जाओ. This is शाही महारानी का ऑब्वियसली द रॉयल राजस्थान फेस्टिवल जिसके बारे में बात कर रही हूँ. एंड अप नेक्स्ट इज हमारा गाना नंबर 15. लो जी, बिल्कुल आपके लिए तैयार है रेडियो मस्ती 24/7 पर ये वाला गाना. कमिंग अप नेक्स्ट राइट हियर राइट नाउ.
1: जब राजस्थान की हवाएं सिंगापुर के शाही स्वाद में घुल जाए, जब लाल मांस, दाल बाटी चूरमा, केर सांगरी और मीठे मीठे घेवर की खुशबू दिल को छू जाए, जब शाही महारानी नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट लेकर आए द रॉयल फ्लेवर्स ऑफ राजस्थान का एक्सक्लूसिव 10-day फेस्टिवल, तो बस बात शाही बन जाए. The Royal Flavors of Rajasthan by Shahi Maharani North Indian Restaurant, 14th to 23rd August. Reserve and prepay online to enjoy the early bird menu at just $78 plus plus per person. Exclusively for dinner. Book your royal experience today at www.shahimaharani.com.
2: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं.
3: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं. मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
4: Namaste behen aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
5: Trending song number 15.

0: I missed it. Oh no, I missed it.
1: Missed the show? Check the Radio Masti 24/7 app menu for on-call timings.
2: 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20.
3: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा.
1: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है. टाइम टू रेज द बार. मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल. Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.
4: देखिए देखिए अब यहाँ पर हमारे साथ टेक्निकल डिटेल्स भी डिस्कस होती हैं. रेडियो मस्ती 24/7 पर आप हैं रेणुका के साथ. जी हाँ, चल रहा है मस्ती टॉप चार्ट, हमारा दूसरा घंटा. गाना नंबर 15 से गाना नंबर 20 आप सुन चुके हैं, या रादर गाना नंबर 20 से गाना नंबर 15 तक आप सुन चुके हैं, और अब आप सुनेंगे इस घंटे गाना नंबर 14, 13, 12, 11, देखते हैं कितने. लेकिन एक बात पक्की है कि मेरी प्लेलिस्ट पूरी की पूरी ऊपर से नीचे हो चुकी है. जी हाँ, टांगे ऊपर सर नीचे. अब क्या है ना, इस कुर्सी पर मैंने ना अगली बार ऐसा कुछ लगा देना है कि बंदा यहाँ पर जो बैठेगा थर्सडे शाम को ना, मेरे अलावा वो कुछ बदल नहीं पाएगा. सीरियसली, मतलब इतना कॉन्ट्रास्ट यार. टॉप 5 वाले गाने सारे के सारे 15-16 पे चल रहे हैं. अब क्या करेंगे, अब मैं आकर अगर सब कुछ बदल दूंगी तो फिर आप लोग कहेंगे कि क्या बात है भाई, गाने इतनी छलांगे कैसे लगा रहे हैं आजकल, व्हाट इज हैपनिंग, स्प्रिंग लगा के बैठे के नीचे. बट कमिंग बैक टू द टेक्निकल डिटेल्स जो हम लोग डिस्कस करते हैं, वेल टेक्निकल डिटेल्स में ऐसे होता है कि शर्मा जी अभी बोल रही हैं ये गाना आपने बिल्कुल सही टाइम पर लगाया है, अभी ना ये क्योंकि घंटा बदलेगा तो ये गाना कट जाएगा. मतलब आप कितने खुश हो रहे इस बात से कि जो गाने आपको नहीं पसंद है वो डेफिनेटली पूरे बजेंगे ही नहीं. क्या बात है. रेडियो मस्ती 24/7 पर अगली खबर देने से पहले हम आपको बताएंगे कि अगला गाना जो आने वाला है वो गाना नंबर 14, एंड ऑफ कोर्स इट इज आल्सो अ रीमेक. अगर आप बता सकते हैं तो बताएं. इट इज फ्रॉम द साउंडट्रैक ऑफ भाई तेरा स्टार है. एंड नंबर 13 पर ऑफ कोर्स इज अ ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम मैं वापस आऊंगा. कमाल है. आपने देखी या नहीं देखी ये वाली फिल्म, अब तो नेटफ्लिक्स पर है. देखनी तो बनती है बॉस. रेडियो मस्ती 24/7 पर बैक टू बैक गाना 14 एंड 13, एंड ऑफ कोर्स मेरा नंबर है 9151896 3. भेजो भेजो मैसेज भेजो.
5: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 14.

0: जब हमारा कोई शो होता है सुपर हिट तो आप कहते हैं और रेडियो मस्ती 24/7 कहता है क्यों नहीं. Presenting the encore of your favorite shows. Another day, another time. For your listening pleasure only. Because super hits deserve a repeat. Check out the encore show schedule on our app menu.
1: Only on Radio Musti 24/7 Live. A part of Musti Media Network Singapore.
2: Trending song. Number 13.

0: फैमिली कमाल तो है इस फिल्म का, एब्सोल्युटली इतनी जोर जोर से बोलो क्या कमाल है, क्या कमाल है। लेकिन यार एंड में वही बात याद आती है, धोती फाड़ के रुमाल है, ओहो क्या बात है। इतने गंदे गंदे जोक शाम के 6:12 पर रेडियो मस्ती 24/7 रेणुका, वी एक्सपेक्ट बेटर।
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
2: चेक इट आउट,
0: एब्सोल्युटली चेक अस आउट गाइस, एंड हैव यू चेक्ड कि हमारा जो ऐप का नाम है, इट हैज चेंज्ड टू मस्ती मीडिया 24/7। अब जाके ना बुद्धू मत बनना, लोगों को ये मत कहना अच्छा सुनो तुमने रेडियो मस्ती 24/7 का ऐप लिया। नहीं, वो ऐप मिलेगा ही नहीं उनको, तो वो लेंगे कहां से। मस्ती मीडिया 24/7 क्यों? क्योंकि भाई सिर्फ रेडियो तो है नहीं ना, हम AVI भी तो उसी में से देखते हैं। अब क्या करें, लोग कहते हैं रेडियो की आंखें कैसे होती हैं, तो हमने कहा भैया हम दिखाते हैं। मस्ती मीडिया 24/7 ऐप डाउनलोड करो और उसमें जाकर रेडियो मस्ती 24/7 भी सुनो और साथ ही साथ में AVI दैट इज ऑडियो विजुअल इंटरैक्टिव भी देखो। एंड गेस व्हाट, कुछ ही दिनों में ऐसे ऐसे फीचर आ रहे हैं कि मैं लिख के देती हूँ पूरे के पूरे सिंगापुर में। क्या मतलब सिंगापुर, पूरे पूरे एशिया पैसिफिक में। अगर आपको इससे बेहतर कोई ऐप मिल जाए तो मेरा नाम आप बदल देना, और बदल दोगे तो क्या रखोगे ये मुझसे आज अप्रूवल ले लो। आय हाय क्या गाना है। रेडियो मस्ती 24/7 पर कमिंग अप नेक्स्ट इज ख्वाब देखे मनाली और नीरज श्रीधर की आवाजें, एंड ऑफ कोर्स फॉलोड बाय गाना नंबर 12। कहीं जाना मत बिल्कुल यहीं रहना रेडियो मस्ती 24/7 पर। आज का सवाल छोटा सा ये था कि $1 million मिलेगा तो सबसे पहले क्या करोगे, बता दो, आप भी बता दो। और सलमा मोमोज ऑफर कर रही है, शर्म नाम की कोई चीज भेज दो यहाँ पर, फोटो मत भेजो, असली भेजो कि मैं दरवाजा खोलूं और सामने कुरियर खड़ा हो। आए हाय ओए होए।
1: It's time for Musty Song of the Hour.

0: चिका चिका चिका चिका। आजकल आपने देखा है कि हर दूसरा इंसान इतना इंटेलिजेंट, इतना नॉलेजेबल, इतना आर्टिस्टिक, इतना कुछ साउंड करता है कि लगता है वाह यार, इस दुनिया में मतलब कोई निकम्मा है ही नहीं, सारे के सारे एक से बढ़कर एक समझदार लोग हैं, है ना? आपको नहीं लगता? ये तब से हुआ है जब से AI, ChatGPT, Claude, ये वो सब हमारे हाथ लगे हैं।
1: They are fresh, they are hot, they are spicy, and they are happening. Join us on Masti Top 20.
0: Masti Top Charts, Renuka ke saath. Aap jante hain ki ek insaan jaise pucho, what's your name? I Rohan. Ye bolta tha. Wo aaj ke din mein likh raha hai, my name is Rohan, and how are you doing, my lady? Maine kaha, hey, English itni sari, phir pata laga ki iska to chat bot chal raha hai. Wahan par AI mein likh likh ke, wahan se lambe lambe मैसेजेस भेज रहा है। चलो कोई ना, आजकल आप फेसबुक देखो, आप इंस्टाग्राम देखो, आप लिंक्डइन देख लो, लोगों के इतने लंबे लंबे विचार, भाषण पे भाषण, इंटेलिजेंट बातें, ओ माय गॉड, मैं भी कहूँ पता नहीं क्या हो गया। और सबसे घटिया चीज है वो AI जनरेटेड जो फोटोज और आर्टवर्क है, जैसा कि आज हमने भी डाला हुआ है अपने सोशल मीडिया पर मिलियनेयर वाला। मैं कहती हूँ सारे लेजी हरकतें कोई भी जिंदगी में करानी हो इंसानों को दे दो, एंड कितनी जल्दी लत लग जाती है पूछो मत। जैसे कि आज लेजी मोमोज बनाए गए हैं किसी के घर पे। अब बताइए, जब मोमोज हैं वो लेजी कैसे हो गए? लेजी तो आप हो ना, इसीलिए वैसे बने हैं। बट ऑन रेडियो मस्ती गाइस, द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। जी हाँ, द कल्ट क्लासिक, आपको याद है? अब उसका सीक्वल बनने की बात हो रही है। इमेजिन डायरेक्टर जोया अख्तर, जी हाँ, शी हैज ड्रॉप्ड अ प्रीटी बिग हिंट एंड शी इज एक्सप्लोरिंग द आइडिया कि ऋतिक रोशन, फरहान अख्तर, अभय देओल, इन लोगों को दोबारा से लाया जाए क्या? आपको क्या लगता है, लाया जाए या नया माल लेकर आए? मतलब आई वुड लव टू हियर योर व्यूज। मुझे लगता है कि समटाइम जो चीज अच्छी है ना, उसको अच्छा ही छोड़कर उस मूड पर आगे निकल जाओ और उसको हमेशा याद करो विद अ स्माइल, रादर देन उसको दोबारा से बुला के देन यू बीट द डेड हॉर्स आउट ऑफ इट्स विट्स मैन। मत करो, मत करो, नए लोग लेकर आओ, है ना, ताकि हम बुराइयां कर सकें अच्छे से। गुड इवनिंग एवरीवन। गा नंबर 12,
2: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 12।

0: आई नेवर अंडरस्टैंड दिस, राणा जी मुझे माफ करना, गलती मारे से हो गई, मेरे को नहीं समझ आता। आज सुबह दूसरा भी गाना, मैं तेरी मांग चांद सितारों से भर दूं, मतलब व्हाई वुड यू डू थिंग्स लाइक दैट, राइट? समथिंग व्हिच इज नॉट इवन पॉसिबल, व्हाई वुड यू इवन राइट दोज इन द लिरिक्स? इवेंचुअली तुमने सिंदूर से ही भरनी है, फिर व्हाट इज दिस चांद सितारों से भर दूं? एनीवे, ऑन रेडियो मस्ती 24/7 आई मस्ट साउंड रियली रियली वन ऑफ दोज पीपल जो हर चीज में गलतियां निकाल रहे हैं, बट यू नो व्हाट, इट्स सो मच फन। तो भाई रेडियो मस्ती 24/7 पर अगली खबर कुछ ऐसी दे रही हूँ मैं आपको कि डायरेक्टर राजकुमार संतोषी जी, उन्होंने हाल ही में बताया कि बंटवारा 1947 का कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट जो है उससे इन्वेस्टर्स काफी परेशान हो गए, और फिर आमिर खान ने किस तरह से आके सपोर्ट किया। आप जानते हैं कि ये वाली फिल्म, ऑल्दो इसके पॉजिटिव रिव्यूज है, परफॉर्मेंस अमेजिंग है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इसी के बीच में बात चल रही है कि इस फिल्म ने क्या क्या परेशानियों के बीच में आकर बनी है ये फिल्म। सो राजकुमार संतोषी, उन्होंने रिवील किया दैट इन्वेस्टर्स ने कहा भाई बड़ा ही रिस्की और बड़े ही मतलब मुस्लिम कैरेक्टर बन रहे हैं हमारे सनी पाजी, तो फिर ये तो सही बात नहीं है यार, उनको तो हमने सिर्फ भारत के लिए लड़ते हुए देखा है, 2.5 किलो हाथ मार के इधर हाथ मार के उधर टाइप्स, राइट? सो फिर राजकुमार संतोषी ने यह बोला कि भाई बड़ी मुश्किल हुई फाइनेंसिंग के लिए, सम इन्वेस्टर्स जो सारे मुंबई वाले लोग हैं, उन्होंने ये कहा भाई सनी देओल कर रहा है फिल्म, अच्छी रेगुलर फिल्म है, सब कुछ है, लेकिन मुस्लिम कैरेक्टर क्यों बन रहा है, मतलब पाकिस्तान क्यों जा रहा है, इसको भारत में रहने दो यार, लोग इतने इमोशनल क्यों जाते हैं, फिल्म में ही तो जा रहा है ना बंदा, एक ही चीज अब कितनी बार हैंडपंप उखाड़ेगा यार, एट सम पॉइंट ही विल आल्सो मूव ऑन ना, हैंडपंप भी आजकल खैर कमी हो गए हैं, नलके नुलके लग गए हैं, सब कुछ हो गया है, घरों में पानी आने लगे हैं, तो हैंडपंप मिल भी तो नहीं रहा है ना, लेकिन ऑन रेडियो मस्ती कोई समझता ही नहीं है एक्चुअली रियल प्रॉब्लम्स। एनीवे, उसके बाद जो आमिर खान है उन्होंने आके सपोर्ट किया एंड मेंशनड कि भाई वो प्रोड्यूस करेंगे अगर और कोई नहीं करेगा। वैसे भी आमिर खान के सारे डिसीजन आजकल गड्ढे में ही जा रहे हैं, तो ये वाली फिल्म ने भी खैर प्रॉफिट तो नहीं कमाया फिलहाल, लेकिन रिव्यू बहुत बढ़िया आ रहे हैं, और रिव्यू बढ़िया आ रहा है हमारा अगले गाने का भी, विच इज एक्चुअली गान नंबर 10। ओ माय गॉड, कैसे लोग गालियां दे देते हैं ना, मतलब सोचो, कर दे मुश्किल जीना इश्क, बीप बीप, यही कहते कहते आगे बढ़ेंगे। दिस इज बेबी डू डाई डू एंड आई वांट टू वॉच दिस फिल्म, अब इतना ओटीटी पे भी नहीं आ रही है, सिंगापुर में भी नहीं आ रही, कैसे देखेगा कोई इंसान। बट ऑन रेडियो मस्ती गाइस, एक बार और आपको याद दिलाएंगे कि बिल्कुल राखी का पावन त्योहार आ रहा है, मेरा भाई तो है नहीं लेकिन आप लोगों के भाई हैं, आप लोग राखी बांधते हो, तो फिर माल इकट्ठे करने का टाइम आ चुका है, राखी टाइम से खरीद लो।
1: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
2: भाई की डन है मम्मा।
3: ड्यूटी?
4: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
3: मैं उठता था।
1: तेरी मेरी बनती नहीं, पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन, इस नोक झोंक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ, वन कैंपल लेन, राखी लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप, अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट jyoti.com.sg।
5: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 10।
6: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो, हमने समझा था इश्क़ी मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: भाई साहब, मैं कुछ भी कर लूं, कुछ भी मैं कर लूं, लेकिन एक चीज पक्की होती है कि जब भी ललिता आती है मेरे शो पर, वो ना तो मेरे पर्सनल नंबर पर लिखेगी, ना हमारे हॉटलाइन पर लिखेगी, ना वो हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पर लिखेगी, वो लिखेगी मेरे पर्सनल फेसबुक पर, मैसेंजर पर, और बोलेगी क्या हाल है, ये माल शाल की क्या बातें हो रही है। और वो टाइम ऐसा होगा कि मैंने देखा ही नहीं होगा बहुत देर तक कि ये वहां पर है, और उसके बाद मेरे को डांट पड़ेगी इससे कि मैं आई थी, तुमने जवाब नहीं दिया। अरे भैया, ये क्या खेल क्या रहे हो तुम मेरे साथ, ये छुपन छुपाई टाइप की गेम कि कहीं भी आगे पकड़ लो। अरे मतलब मैं पकड़ना चाहती हूँ तुमको, टाइम से पकड़ना चाहती हूँ, लेकिन तुम छुपे भी तो ऐसी ऐसी जगह पे हो। अब कितनी आंखें हैं मेरे पास यार, आंखें तो दो ही हैं, हाथ भी दो ही हैं। मतलब याद है वो फिल्म दो आंखें बारह हाथ, ऐसा लग रहा है एक रेडियो जॉकी की किस्मत पे ही लिखा होगा, पक्की बात है। दो आंखें लेकिन भात जो है ना हमारे, वो बारह हाथों की तरह चलते हैं। सीरियसली, कंसोल पे एक होता है, कंप्यूटर पे होता है, माइक पे होता है, कीबोर्ड पे होता है, फोन पे होता है, लैपटॉप के तीन चार विंडोज खुले होते हैं वहां पर होता है, पूछो मत आप। बट ऑन रेडियो मस्ती, और साथ में मुंह चल रहा होता है ऐसे पट पट पट, कभी कभी लगता है यार मैंने बोला क्या था अभी अभी। But on Radio Masti 24/7, guys, the next gana which will come up is obviously going to be gana number 9. अभी तक आपने 10 गाना अभी आपने सुना, तो 11 गाने हो चुके हैं, 9 गाने रहते हैं। अब मैं पूछना शुरू करूंगी वो वाला सवाल कि भाई कौन सा गाना होने वाला है आज के दिन में नंबर एक पर, बता पाएगा कोई या नहीं बता पाएगा, बताओ। लेकिन फिलहाल के लिए एक गाना चलाने वाली हूँ कुणाल गांजावाली की आवाज में, सोनू निगम, सुनिधि एंड ऋचा शर्मा। लेट्स सी इफ यू कैन गेस व्हिच गाना दिस इज। कमिंग अप नेक्स्ट एज अ फ्लैशबैक गाना ऑफ द आवर,
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट। Hollywood Flashback.
2: दस का बीस, दस का बीस, दस का बीस, दस।
3: अरे अरे, अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
4: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है,
5: टाइम टू रेज द बार। रम्मा
6: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक, फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
4: Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.

0: नचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: क्या गाना है यार, सिल्क राउट का ये वाला गाना। आप जानते हो कि केके की आवाज और केके का तरीका, उसका अंदाज वो सो अमेजिंग। लेकिन हमेशा की तरह हम लोग उस इंसान को तभी याद करते हैं जब वो इंसान हमारे बीच नहीं होता। जब वो होता है ना, तब उसकी वैल्यू किसी को समझ में नहीं आती। अभी मैं हूँ, मेरी वैल्यू है आप लोगों को नहीं है ना। दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर स्पाइसी एंड दे आर हैपनिंग। जॉइन अस ऑन मस्ती टॉप 20। जी मस्ती टॉप 20 पर इस समय रेणुका आपके साथ में, और चल रहा है यहाँ पर हमारा 6:45 और 56 सेकंड पर गाना नंबर 9 का इंतजार। राइट, तो अब देखने की बात यह है कि भाई आगे क्या करना है। राजपाल यादव जी ने बता दिया है कि उनको 250 करोड़, जी हाँ 250 करोड़ का नुकसान हुआ है इन द लास्ट 13 ईयर्स। कर क्या रहा था भाई ये? He said that he had been embroiled in a check bounce case since 2013, और उसके बाद जेल टर्म ये वो मल्टीपल ओकेजन्स पर। नाउ वंस अगेन ही इज डिनाइड द एलिगेशंस मेड अगेंस्ट हिम इन द चेक बाउंस केस, और कहा है कि मुझे कोई खरीद नहीं सकता। भाई तेरे 250 करोड़ के लॉस के साथ तो वाकई कोई नहीं खरीद सकता। 2013 से 2026 उसने बोला कि मैं पर्सनल लॉस 200 से 250 करोड़ है मेरा। पर कैसे हो गया, मेरा तो नंबर पढ़ के मेरा दिमाग खराब हो रहा है सीरियसली राइट नाउ। ही सेड आई एम सेइंग दिस फ्रॉम माय हार्ट, आई मिस्ड एट लीस्ट 50 ऑफ माय टूर्स अब्रॉड एंड व्हाटएवर फीस आई शुड हैव बीन गेटिंग वाज रिड्यूस्ड। और इसकी वजह से जैसे कि अगर मुझे 100 रुपए मिलने थे तो मुझे 10 मिले। अब मैं क्या ही बताऊं, मैं तो स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स हूं, मैं तो परफेक्शन इन माय आर्ट ढूंढता हूं, फीस तो मेरे पीछे अपने आप खुद चली आएगी। मैं यही सोच रहा था भाई, फीस के पैर नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो वन वे होते हैं, बाय गॉड की कसम। वो एक ही तरफ जाती है, वो भी दूर पास नहीं आती। कभी देखा है पैसे को मतलब पैर लगा के तुम्हारे पीछे दौड़ते हुए और तुम आगे भाग रहे हो? ऐसा कभी होता ही नहीं है। गहरा हुआ, लेकिन अब मैं सिर्फ यही कहूंगी कि जिन लोगों को इस गाने से नफरत है वो प्लीज 6 मिनट और 2 सेकंड के लिए बंद कर दे रेडियो, क्योंकि ये तो चलेगा ही चलेगा, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। गाना नंबर 9 कमिंग अप राइट नाउ, फॉलोड बाय ब्यूटीफुल रेट्रो। दोनों ही सुनना और जल्दी मिलना जल्दी।
1: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 9।

0: राज भी बहुत ही गहरा हुआ कि आप लोग इस टाइम पर धीरे धीरे आके मुझे इतना मतलब परेशान क्यों करते हैं, शुरू से क्यों नहीं आते हो यार, अभी सडनली आके रेणुका ये बीच में जो गाने चल रहे हैं उसमें हमारी पसंद का चल सकता है? नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। आप मेरी कितनी सुनते हो जो मैं आपकी सुनूं? रेडियो मस्ती 24/7 पर चल सकता है डार्लिंग्स। आप ही के लिए तो बैठी हूँ यहाँ पर, कोई और काम तो था नहीं, जन्म मैंने आप ही के लिए लिया है ना। Is it still sounding sarcastic? Well, I tried my best not to, but... All right, so that was gana number 9, Gehra Hua. Ji haan, yaad hai? It ruled the airwaves for at least I would say 15 hafte, if not more than that, you know. Gehra Hua was always number one. Lekin filhaal ke liye aa raha hai gana number 8, and of course, hum ye saath saath sunenge, aur phir uske baad main aapko main milungi agle ghante mein, theek hai? कहीं गए ना तो मैंने पीछे आ जाना है।
1: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 8।
0: एंड ऑफ कोर्स मेरे प्यारे KNK जो मुझे भोपाल से धमकियां दे रहे हो ना, इतना बता दूं मैं, अभी ना इत्तू से हो तुम, इत्तू से मतलब अभी ना तुम जमीन से पूरे निकले भी नहीं हो और मतलब उछलने की कोशिश हो रही है। टू क्यूट गाइज, आई लव यू। रक्षाबंधन आ रहा है, दोनों मुझे फोटो भेज देना, समझ में आई है? आपस में

0: आप यहाँ के शो ही कर लो ना, मुझे बोल रहे हो अच्छा ये गाने के बीच में अब आप बात करना, अब ये वाला गाना चल रहे तो ये वाला हमें बहुत पसंद है, इसके बीच में मत करना। आप लोग एक काम करो, अब इतनी ट्रेनिंग तो हो गई आपकी फ्री में आरजे एकेडमी की है ना, अब यहाँ पर आके शोज भी होस्ट करने शुरू कर दो, जान छूटेगी मेरी, सिर्फ आप लोगों को डांटने का फुल मेरे को मौका मिल जाएगा। रेडियो मस्ती 24/7 पर वेलकम टू द जंगल का ये वाला गाना हैज बीन ऑन नंबर 8। कमिंग अप एक रोमांटिक सा गाना हो जाए क्या?
1: Hollywood flashback.
0: आइए आरटी आ जाओ, गुड इवनिंग, 7 बजने ही वाले हैं, बिल्कुल सही टाइम पे आई हो। और आते ही पूछ रही है कौन तंग कर रहा है। अरे यार दो छोटे छोटे बच्चे तंग कर रहे हैं यार, मेरे को बताओ, मेरा ये हाल हो गया आजकल।

0: Miss the show? Check the Radio Masti 24/7 app menu for encore timings. On Radio Masti 24/7 Live, we promise to help you unwind anytime, anywhere.
1: They are fresh. They are hot. They are happening. From rocking the charts to ruling the countdown. Yes, Masti Top 20. Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards. The latest and the brightest. The week's top chart busters.
2: एक बात तो है, मुझे एक काम करना है सबसे पहले, और ये तालियां जा रही हैं स्पेशली की आशा हसवानी के लिए। ये लड़ाकी औरत। अरे मैं कहती हूँ कमाल किया लड़की ने यार। ये 2016 की पैदा हुई है, अभी 10 साल की, मतलब अभी 10 साल की भी नहीं हुई है, अभी तो मतलब रहते हैं थोड़े दिन 10 साल के होने में। एंड शी इज एक्चुअली, उसको क्या सॉलिड जीती है यार ये लड़की इन दिस कुराश चैंपियनशिप। आप जानते हो कि कुराश जो चैंपियनशिप होती है, आपको पता है कुराश क्या होता है? एक्चुअली उज्बेकिस्तान का ये खेल है जिसमें कि वो धोबी पटका कहते हैं ना, धोबी पटका वो होता है इसके अंदर। बेसिकली एक उठाता है, पकड़ता है, उसको पीठ पे उड़ाता है, उधर फेंकता है, फिर दूसरा उठाता है, मतलब इस तरह से लड़ाकी टाइप की ये जो गेम है, इसमें ये लड़की क्या सॉलिड जीत के आई है यार। मतलब सेकंड पोजीशन पे आई है और कमाल है, मेरे को सर्टिफिकेट मिला है तो इसीलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को कि भाई ये लड़की सच्ची में ऑथेंटिक है। सर्टिफिकेट मिला है मतलब सच में होकर आया। सो कांग्रेचुलेशंस माय डार्लिंग, ऐसे ही लड़ती रहो क्योंकि लड़ाकी तो तुम हो ही, लेकिन कियान को मत मारना यार, उसको मत मारना, बिकॉज बेचारा बच्चा यार डर गया होगा, अब तो तुम्हें सर्टिफिकेट वगैरह भी मिल गया। बट कियान तुम क्यों नहीं हो इस गेम में यार, मुझे भी बताना। रेडियो मस्ती 24/7 पर, वेल वी ऑलवेज से एज द चिल्ड्रन मूव अहेड इन लाइफ, हमें मतलब बड़ी खुशी मिलती है उनको देखते हुए कि वो अलग अलग एरियाज में कैसे कैसे चैंपियंस बनते चले जा रहे हैं। ऑसम। बट ऑन रेडियो मस्ती गाइज राइट नाउ, कुछ कुछ हमारे लिसनर्स हैं जो एक ही टांग को बार बार तोड़वाते हैं। पता है ना क्यों टांगें टूटती हैं? क्योंकि जब तुम टांग अड़ाते हो तो फिर ऑब्वियस है कि उन पर कहीं ना कहीं जख्म आते हैं। टांग अड़ाना बंद करो ना दुनिया में, लोगों की जिंदगियों में। Get well soon, my dear. Trending song number 7.

0: तुम्हारे बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है यार, कोई मतलब कोई कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो रही, तुम्हारी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, यू जस्ट एग्जिस्टिंग एंड एग्जिस्टिंग इन लाइफ विदाउट एनी यू नो एनी रीजन टू बी स्पोकन अबाउट. सो देन यू क्रिएट दिस कहानी. ये पति पत्नी जो है ना, दोनों ही मतलब अब ये नए ड्रामा लग रहा है, मुझे लग रहा है 43 इयर्स हो चुके हैं इन दोनों को शादी में. 43 इयर्स के बाद बंदा लेजी हो जाता है यार कि चल अब जो चल रही है चलने दे यार, मतलब सीरियसली इसमें भी लेजी हो जाता है इंसान की अब इसने किसी और के साथ भी बाहर करना है तो कर ले, अव्वल तो कुछ होगा नहीं ऐसा. ठीक है 43 इयर्स साथ में, मतलब यू कैलकुलेट बैकवर्ड्स अराउंड 60 प्लस वट एवर राइट, तो तब तक बंदा डोमेस्टिकेट हो चुका होता है. कहते हैं छोड़ यार अब कौन जाएगा किसी और के पास, टू लेजी टू रियली इवन गो एंड मेक आउट राइट. सो एक्टर गोविंदा का जो मैनेजर है शशि सिन्हा, हाल ही में बड़ा डिसअपॉइंटेड कि सुनीता आहूजा ने डिवोर्स कर दिया पहले तो, उसके बाद फिर विड्रॉ कर लिया. ही सेड मीडिया अटेंशन इतनी हो गई, कपल की मैरिटल इश्यूज के बारे में बड़ा ही बुरा हुआ जी, बड़ा ही बुरा हुआ. फिर साथ ही में ही ऑल्सो सेड कि अगर कुछ होने ही वाला था तो फिर पहले मतलब अगर विड्रॉ ही करना था तो पहले इतना सारा ड्रामा क्यों किया. भाई तू भी तो जाके डिस्कशन कर रहा है, वो जो भी कर रहे हैं यू आर एक्चुअली गिविंग योर इंटरव्यूज इन द मीडिया, सो यू आर ऑल्सो एडिंग फ्यूल टू द फायर राइट. हम सब समझते हैं, हम इतने बुद्धू भी नहीं है. आज के जमाने में कहते हैं ना एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, सो बस करो, बैड है तो भी गुड है, पॉपुलैरिटी तो मिलेगी. रेडियो मसी 24/7 पर आपको पॉपुलैरिटी के बारे में अगर बताएं तो यू कुड बी चोजन टू बी ऑन स्टेज विद सुहानी शाह. आप सोचो सुहानी शाह जब वो आकर मेंटलिस्ट 20 सितंबर को अपना शो करेगी तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है सब पता लगा लेगी. जी हाँ, तो अगर आपको कोई दुश्मन है ना है जिसके बारे में आपको निकालना है कि भाई उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो आप उसको लेके जाओ इस शो पे और फिर उसके बाद सुहानी को बोलो इसके दिमाग से निकाल के बताइए मेरे बारे में क्या सोचती, और फिर पता लग जाएगा. फिर ना आप लोगों के बीच में लड़ाई हो जाएगी, बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है, बहुत एक्साइटमेंट हो जाएगी. तो जाओ और sistic.com.sg पर सुहानी शाह स्पेल बाउंड की टिकट्स ले लो, इट्स ओनली $69 ऑनवर्ड्स. गुड इवनिंग एवरीवन, रेडियो मस्ती 24/7 पर. अगला गाना इज मस्ती सॉन्ग ऑफ द आवर. भागना नहीं है, सिर्फ सुनिधि को भागने का मन कर रहा है अपने मन के साथ.
1: Aamir Khan wondered.
2: Wow. Look, I could have thought of anything. That's amazing. Yeah.
1: Salman Khan wanted answers.
3: Kaise kiya ye?
1: R. Madhavan said.
4: Awesome. You're very good, yaar. Very well done.
1: And Boman Irani?
5: I say this with great respect. This is actually, it's blown my mind.
1: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
6: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhani.
1: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wonderful escapades and epic encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer, People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
7: How do you know these things? Stop reading my mind.
8: It's time for

0: What a beautiful gana that is. Bhage Re Man, Chameli ke soundtrack se sun rahe hum Sunidhi Chauhan ki awaaz. It's about 7:15 by the studio clock. Aur yahan par Radio Masti 24/7 par chal raha hai. Ye show jiska naam hai Masti Top Charts. Masti Top Charts mein usually hamesha obviously hum chahenge ki top 20 गाने ही आपको सुनाएं, लेकिन बीच बीच में अरे यार बाकी जो अपने हिट्स हिट्स वाले गाने होते हैं उनका टेस्ट भी कुछ अलग ही होता है ना बेटा.
1: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल.
0: My darlings, I want to give you the next cover. Manoj Bajpayee as a Mahatma Gandhi. Can you believe it? Or can you believe it? क्या ये जो फिल्म मेकर है ना सुधीर मिश्रा, वो जो मतलब एक फिल्म बना रहे हैं, अभी नाम नहीं है उस फिल्म का सो मैं भी बता नहीं सकती हूँ, लेकिन मनोज बाजपेयी उसमें, जी हाँ, 21 दिन ऑफ इन द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, दैट्स व्हाट द फिल्म इज अबाउट ड्यूरिंग इंडियाज इंडिपेंडेंस. वेल इट ऑल्सो मार्क्स सुधीर मिश्रा का रिटर्न टू द बिग स्क्रीन एंड पर्सनल ह्यूमन स्टोरी विद द स्केल ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस. इन दोनों को साथ साथ में मिलाते हुए काफी इंटीमेट मूविंग पर्सपेक्टिव ऑन द चैप्टर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस जर्नी ये बना रहे हैं सुधीर मिश्रा. इनफैक्ट एक फोटोग्राफ थी इस पूरी की पूरी न्यूज के साथ में और मैं ना उसको देखने लगी कि ये ऐसे दिखेंगे मनोज बाजपेयी, लेकिन काफी लंबे सफेद बाल थे तो मैंने कहा पर मनोज बाजपेयी तो महात्मा गांधी बन रहे हैं, महात्मा गांधी जी के मैंने कभी बाल मतलब ऐसे नहीं हो सकता है, वाइट तो बिल्कुल नहीं हो सकते. जब वो साउथ अफ्रीका में थे तब उनके काले बाल जरूर थे, राइट? देन आई रियलाइज ये तो सुधीर मिश्रा की फोटो है. बट आई यू नो Sometimes you're just so overwhelmed by the headline of that news that you start imagining, nahi nahi ye to Manoj Bajpayee hoga. But yeah, obviously he is Sudhir Mishra. And this is ye jo 21 din hai na Mahatma Gandhi ji ki zindagi ke, ye bade hi intense wale din the jahan par matlab nuances nikal ke aayenge of the deeply human depiction of Mahatma Gandhi. Isme Saurabh Shukla bhi dikhenge, lekin aap jante hain jab main mili thi Manoj Bajpayee se to maine unko ek hi baat kahi thi ki bhai aap aasan picture nahi bana sakte, aapki movies देखते टाइम क्या जरूरी है कि हम कुर्सी के कोने में बैठे और अपने नाखून खा जाएं, जरूरी है क्या? तो वो हंसने लगे. अब बात ये है कि उन्होंने क्या जवाब दिया था ये आप जाके उनके इंटरव्यू में देखो ना, वो मेरे इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा आपको या मस्ती एवीआई पर मिल जाएगा. जी हाँ, जाके देखो मजा आएगा. फॉर नाउ द नेक्स्ट गाना दैट आई एम प्लेइंग राइट नाउ इज गाना नंबर 6. कौन सा है? लेट्स फिगर दैट आउट गाइस. गुड इवनिंग.
2: Trending song number 6.

0: गुलाबी साड़ी किस किस के पास है, फोटो भेजो ना यार, कितनी सेक्सी लगती है गुलाबी साड़ी, है ना गुलाबो। रेडियो मस्ती 24/7, इट्स अबाउट 7:21 बाय द स्टूडियो क्लॉक। और इसके बाद एक कमाल का गाना, अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज, ऑब्वियसली शाहरुख खान पर बना हुआ ये यस बॉस का गाना, बहुत ही मजा आएगा। एंड देन वील टॉक द टॉप 5 सॉन्ग्स ऑफ द इवनिंग, स्टे ट्यून्ड।
1: Bollywood Flashback by

0: Wow, that was absolutely noisy, but definitely बड़ा ही amazing सा गाना. Good evening everyone, this is Renuka with you. Radio Masti 24/7 पर चल रहा है मस्ती टॉप चार्ट. जैसे कि आप जानते हैं गोलमाल 5, it is almost ready. Can you believe that? जी बिल्कुल, मतलब सोचिए कि डायलॉग का शूट खत्म भी हो चुका है. दिस ऑब्वियसली हैज अजय देवगन, अक्षय कुमार, अर्शद वारसी, कुणाल खेमू, साथ में तुषार कपूर एंड शर्मन जोशी. अब तुषार कपूर के डायलॉग्स तो रिकॉर्ड हो ही गए होंगे ना, आ आ ई ई ऊ, दैट इज ऑल दैट ही हैज टू डू, सो दैट मस्ट बी वेरी क्विक. बट शर्मन जोशी एंड ऑल, ऑफकोर्स दे आर ऑल वेरी इंप्रेस्ड हाउ एफिशियंटली रोहित शेट्टी इज यंग असिस्टेंट टीम मैनेजर्स द सेट्स. मतलब सोचिए कि डायलॉग पोर्शन पूरे पूरे खत्म, एंड वॉट remains is the shooting of two songs. The title track, dono hi jisme hai star cast, expected to be filmed aane wale mahine mein. And Sharman Joshi, he was largely part of the recently wrapped Ooty schedule. So bas dekhne ki baat ye hai ki ab release kab hoga, kab hogi release. To phir it's already talking, circulating on social media, aur lag raha hai ki bhai kisi bhi time par announcement ho jayegi ki kab release hone wali hai ye film. Bhai abhi filhal ke liye रिपोर्ट्स आ रही हैं इधर उधर की कि आज हो रही है, अगले हफ्ते हो रही है. तो बोला नहीं नहीं अभी हमने कुछ अनाउंस नहीं किया, दिस इज ऑल रूमर्स ऑलराइट, बिकॉज पीपल लव टू डू दैट. एंड हम चाहेंगे कि कोई भी अनवेरिफाइड क्लेम जो भी सोशल मीडिया पर हो उसको आप टोटली इग्नोर करें और रिपोर्ट करें. हाँ भाई, हमें तो और कोई काम ही नहीं है कि आप लोगों की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करें. बट ऑन रेडियो मस्ती गाइस, द नेक्स्ट ट्रैक आई एम गोना प्ले इज गाना नंबर 4, एंड गाना नंबर 4 आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा या शायद एक ही बार सुना होगा हमारे स्टेशन पर. तो वो अभी आने वाला है, फॉलोड बाय अ ब्यूटीफुल रेट्रो फ्रॉम द 90s. येट अगेन 90s के गाने चला दो तो सबके कान हो जाते हैं खड़े. मुझे पता है मैसेजेस आने लग जाते हैं बहुत सारे.
1: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 4.

0: गॉड, द मेमोरीज विद द सॉन्ग जस्ट अमेजिंग. ये तो मूवी वाज अनदर लेवल रियली. आई थिंक ईच वन ऑफ अस हैड आवर शेयर ऑफ रोमांस जस्ट लिसनिंग टू दिस साउंडट्रैक ओवर एंड ओवर अगेन. है ना, है ना, है ना.
1: You're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping you connected anywhere, anytime, the desi way.
0: भाई देसी है, पर देसी है, जो भी है आप ही का है. And please do note that our app name is now Masti Media 24/7. Radio Masti 24/7 definitely यहाँ पर है और साथ ही में है Masti AVI और भी बहुत कुछ है. और आने वाले दिनों में आप देखेंगे नए नए फीचर्स हमारे इस ऐप में. So get ready guys, get geared up and I promise you, you will not regret being a part of the Masti family. अच्छा, इसके आगे मैं ये बताना चाहती हूँ that this Sunday is really important because गुरुद्वारा जो है कतोंग में 17 Wilkinson Road, वहाँ सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक यू गोना बी हैविंग नाम रस फन फेयर. यू वोंट बिलीव इट, इट्स एक्चुअली मतलब वहां का. पहली बात तो मैंने ना वेजिटेरियन, सिंगापुर की लार्जेस्ट वेजिटेरियन वैरायटी अगर आपको खानी है ना तो आप पहुंच जाना सुबह 10 से लेकर शाम 4 बजे तक गुरुद्वारा कतोंग 23 अगस्त को. और वहां पर इट्स नाम रस फन फेयर, मतलब गेम्स हैं, लकी ड्रॉ है और खाना जैसे कि मैंने कहा यू हैव नॉट सीन एनी better variety anywhere. I promise you that. All right, on Radio Masti 24/7 guys, the next thing is kyunki ab reh gaye hain hamare show ke 20 minute and it's important for me to tell you kaun se hain 3 gaane. Yes, Bandhu, Bandhu, Cocktail 2 ke soundtrack se. You'll be listening to this gana. And this one. Main wapas aaunga ke soundtrack se right now. Ye wala gana bhi. Ab teenon mein se kaun sa number pe hai ye aap bataenge. Cocktail 2, yet again. So, ये 3 गाने, तीनों में से आपको ये बताना है कि कौन सा होने वाला है number 1. Now guys, come on, I've given you enough hint. I'm waiting for your messages. Radio Masti 24/7. जी हाँ, 9151896 right now, right here. Send me a text and yes, I will read it out to show you कि मैं सारे messages पढ़ रही हूँ.
2: Trending song number 3.

0: रेडियो मस्ती 24/7। आप भी सोच रहे होंगे रेणुका यहाँ से भाग गई, क्योंकि मुझे धमकियां तो मिलनी शुरू हो गई ना कि 7:45 पे अगर तुम निकली 7:45 पे तो हम भी पीटेंगे। यार राइट, जस्ट बिकॉज आई सेड मुझे छोड़ के गए तो मैं पीटूंगी, राइट राइट और राइट।
1: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
0: Your darling's right here, but right now your darling's saying, अब मुझे जाने दो ना, पास आओ ना मत कहना, प्लीज किसके पास आऊंगी मैं। But it's time for me to take your leave, guys. But I had an awesome time presenting this show to you. पता है क्यों? Because top charts में ना मस्तियां बहुत होती है, कुछ भी कर सकते हो, कोई भी गाने ऊपर नीचे कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात है कि आपकी पसंद के गाने नहीं चलते, गंदे गंदे वाले रिक्वेस्ट जब आते हैं ना मंडेज को, सो आई जस्ट डोंट नो वॉट to do. But today, yes, I'm leaving you with two tracks right now. आप में से कुछ लोगों ने बोला है कि माशूका नंबर वन होगा, कुछ लोगों ने बोला है कि बंधु नंबर वन होगा, so we're going to figure that out in just a little bit. लेकिन पहले, कैसी पहेली है ना जिंदगी, कैसी पहेली है जिंदगी कि कभी भी कुछ भी करती है, कोई भी गाना ऊपर ले जाती है, कोई भी नीचे ले जाती है, क्या क्या दिन दिखाती है। ओ हो, ऑन दैट फिलोसॉफिकल नोट आई एम गोइंग टू एंड दिस शो एंड आई एम गोइंग टू से बाय। यू गाइस हैव अ फैंटास्टिक फैंटास्टिक इवनिंग। आई विल सी यू इन व्हाट 11 hours from now. और यहाँ पर आकर फिर हम मस्ती मैडनेस में बात करेंगे। Alright, so keep smiling guys and remember, smile is the second best thing you can do with your lips. Love you all. Take care. Bye. Bollywood flashback.

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल,
2: आज फिर तुम पे।
0: इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
3: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
7: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual-focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on radio.

0: थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो।
1: The perfect recipe for you to unwind. Musti weekends only on Radio Musti 24/7 Live.

0: लिसन, मैं पेरिस में अकेली हूँ।
1: नो
0: यार, इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगी?
1: आई डोंट नो।
0: देख, अकेली लड़की, अनजान शहर, कुछ हो गया तो।
1: अच्छा देख, बेड एक ही है, शेयर करना पड़ेगा।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
3: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 Live. Have a masti bhara weekend.

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल, इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है।
1: तुमको
0: ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है।
2: मुझे चांद पे ले चलो।
0: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
2: रात अकेले
3: Best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

I would like to thank Mirchi Awards for giving me this opportunity. हर कंपोजर का एक ड्रीम होता है, मेरा भी एक ड्रीम था कि मैं अपने देश के साउंड्स को लेके कुछ करूं, और मुझे आज इस प्लेटफॉर्म पे ये मौका मिला कि मैं अपने देश के म्यूज़िक को एक साथ इकट्ठे बाइंड करके एक स्टेज पे लाऊं. एंड इट वुडन्ट हैव बीन पॉसिबल विदाउट दिस अमेजिंग आर्टिस्ट्स ऑन स्टेज, एंड दिस इज द साउंड ऑफ आवर नेशन. And this is what makes me love my zindagi. So on that note.

इश्क ही तो देता फिरता है गवाही, वरना बता खुदा होने का सबूत क्या है।

0: बात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: गाना चाहिए, आप बोलो हम बनाएंगे। चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती बॉइस, आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आप

0: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
1: शशि वो मैनहट्टन है।
0: मैनहट्टन
2: मैन आजमी टोपी और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी
1: टैन मतलब वो धूप की छाप।

0: बात भी बाकी है, मगर अभी रात अकेली है। जोश में रहो।
1: धन हो तेरे मेरे प्यार की।
2: क्या प्यार की?
1: अरे कुंडली।
2: कैसे कुंडली? काय के कुंडली?
1: जन्म कुंडली, धर्म कुंडली, कर्म कुंडली, लगन कुंडली, मिल गई रे मिल गई।

0: ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ।
1: जादू है, नशा है और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना।

मर जाओगे प्यार कर लो, कल का सपना किसने देखा, इन राहों से आज गुजर लो, अपने दिल का दामन भर लो, मर जाओगे प्यार कर लो, कल का सपना किसने देखा, इन राहों से आज गुजर लो। मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा, आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगी शाम, देखो देखो देखो देखो देखो न्यूयॉर्क इन पेरिस। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा, आओ तुमको दिखलाता हूँ।

0: बात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: ये बात है इसमें भी धोखा है, मोहब्बत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है, पर बड़े गजब

0: जहाँ ये मस्ती नजर मचाई देता कुछ नहीं सुझाई, जहाँ ये मस्ती नजर मचाई देता कुछ नहीं सुझाई।
1: तक रात नैन मिलता है जैन मूर्ख क्यों रोता है, तक रात नैन मिलता है जैन मूर्ख क्यों रोता है, मूर्ख क्यों रोता है।
0: मोहब्बत कर लो भी भर लो, आज किसने रोका है, पर

0: भी प्यार कुछ भी नहीं अपना है, किया एक बार हमने भी प्यार कुछ भी नहीं अपना है, कुछ भी नहीं अपना है।
1: शिकायत कर लो ये भर लो, आज किसने रोका है, हो सके तो दुनिया छोड़ दो, दुनिया भी धोखा है।
0: मोहब्बत कर लो ये भर लो, आज किसने रोका है।

0: मिलन चाहो तो मिले जुदाई, उल्फत में यही बुराई। मिलन चाहो तो मिले जुदाई, उल्फत में यही बुराई।
1: सब रंज भूल खिलता है भूल भंवरा जब मिलता है। सब रंज भूल खिलता है भूल भंवरा जब मिलता है, भंवरा जब मिलता है।
0: मोहब्बत कर लो जी भर लो।

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

0: बाजू
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: What a beautiful number this Monday morning, 7:34 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में। गुड मॉर्निंग। ट्रैफिक का अपडेट चलिए साथ में लेते हैं। सिंगापुर की सड़कों का हाल चाल, स्टेशनरी व्हीकल जो है आपको मिलेगा ऑन PIE towards Changi after Payalabar Road। हेवी ट्रैफिक की खबर ऑन CTE towards AYE between AMK Avenue 1 and AMK Avenue 5। और मिलेगा हेवी ट्रैफिक ऑन PIE towards Tuas at CTE SLE exit। Well, That was the traffic update इस सुबह का, यानी कि मंडे मॉर्निंग। बट वेल, कमिंग अप इज बागी के साउंडट्रैक से ये वाला गाना, इट्स अ ब्यूटीफुल वन, एंड आई विल बी बैक विद द हाइलाइट्स ऑफ नेशनल डे रैली 2026। सो हैंग ऑन एंड यस, स्टे ट्यून्ड टू रेडियो मस्ती 24/7।

0: मंडे कॉफी का बेस्ट पार्टनर द मॉर्निंग शो ऑन रेडियो मस्ती 24/7 न्यूज व्यूज एंड अ पिंच मस्ती.
1: Yes, that's right. This is the morning show. 7:49 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में. रेडियो मस्ती 24/7 मैं हूं अंतरा आपके साथ. वेल, पार्ट टू के लिए नेशनल डे रैली के हाईलाइट्स, लेट्स टॉक अबाउट इट. अब फैमिलीज बेबीज हाउसिंग से थोड़ा आगे बढ़ते हैं बिकॉज सम ऑफ दीज अनाउंसमेंट्स आर एक्चुअली क्वाइट इंटरेस्टिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सोशल मीडिया एंड द बच्चे. सो राइट नाउ जनरली 13 इज द मिनिमम एज टू क्रिएट अकाउंट ऑन मोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. बट प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वॉन्ग जो है उन्होंने कहा सिंगापुर में कंसिडर raising the minimum age beyond 13 if the current safeguards by social media platforms are found to be inadequate. Now the parents are definitely listening now and probably divided into two camps ki yes bilkul karna hi chahiye, and the other camp is thinking ki age badha bhi diya to bacche date of birth वैसे भी सही कब डालते हैं. है ना. But yes, something to watch because no decision has been announced yet. It is something the government may consider. Now, cultural changes की अगर बात की जाए, so from September 2026, restrictions around Chinese dialect content are being relaxed. Movies that are fully or mostly in a dialect will be allowed to screen in cinemas without a limit on the number of screenings, subject to requirements including Mandarin subtitles and availability of Mandarin dubbed version. Right? Restrictions जो डायलेक्ट कंटेंट के लिए है उन सब्सक्रिप्शन टीवी जो है उनको भी रिमूव किया जा रहा है. एंड देन वी गेट टू द अनाउंसमेंट्स वेयर सिंगापुर बेसिकली सेड नीड मोर स्पेस. ओके, लेट्स वेक अप. सो गवर्नमेंट इज लुकिंग एट मर्जिंग सिमाकाओ, बुकोम, सुडोंग एंड सेवरल स्मॉलर आइलैंड्स इन द साउथ ऑफ जुरोंग आइलैंड एंड make it one mega western island. ye jo idea hai, it's that this could eventually jo hai house new industries, power generation infrastructure and also provide space for SAF. and while we are talking islands, Pulau Tekong could someday be connected to mainland Singapore by undersea tunnel. now the government jo hai wo bhi study kar rahi hai whether that's feasible or not. so again tunnel ban raha hai, kal se wala scene nahi hai. it's that at the study stage at the moment. But imagine telling someone in future that हमारे ज़माने में Tekong ferry से जाया करते थे. So that's National Day Rally 2026 in a nutshell. Support for families and housing, changes around childcare, preschool, social media safeguards, preserving dialect culture and some pretty big ideas about how Singapore itself could physically grow in years ahead. So well, इस रिविजन का क्लास ऑफिशियली फिलहाल यहाँ पे रैप अप होता है, बट अभी हमारा शो नहीं. लेट्स गो लिसन टू सम रियली रियली गुड म्यूजिक. कमिंग अप नेक्स्ट इज अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम द साउंडट्रैक ऑफ मिस्टर एंड मिसेस माही. कमिंग अप ओनली फॉर यू, दिस इज द मॉर्निंग शो ऑन रेडियो मस्ती 24/7. मैं अंतरा आपके साथ, स्टे ट्यून्ड.

मंडे कॉफी का बेस्ट पार्टनर द मॉर्निंग शो ऑन रेडियो मस्ती 24/7 न्यूज व्यूज एंड अ पिंच मस्ती।